वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरन न जाई धोती टिका जप माली तैन मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े बस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पियावे वही सा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम करे डा डेरा धू नान कूड़ रहे आप पारकू मथे टिका तेर तो तिक खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्राण लेश ना ले पुहे पुराण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख के चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा ए अन साडा फिटा तन फिटा फिर तरेन मन जुठे जुली ब्रेन कहो नानक सच क्या है सुच हो वह कहां सच पाए पौड़ी चले अंदर सब को

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उधर 9870 किलोवाट से ताई खान सवाई तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस मिस ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुझ सकना प्रोग्राम शुरू हो चुका है डिटेल्स को जनत रहे थोड़ा घर में तमा हमेशा भग करम साहब के बदुंदा ताई खान पोए तफसरो ऐप पोए प्रोग्राम नशे के में दोस्त जनत तो कह खबर कड़ी मिस हेडलाइंस प्रोग्राम जी आखिर में ब्रॉडकास्ट कह वेंदियो इन तई प्रोग्राम जी तफसील है तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस गुजरा ये रचो तो भगत कराम साहब जन जे मिठड़े आवास में कलाम बुधो
1: दादारी दादा सर सुबह की देखे सर्दी हो बल सुंग भरी दी सबका और जो लक

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश आहे प्रोग्राम सॼो तोखे ख़बर कहिड़ी।

0: मुल्क मथा वधन कर्ज से वाबस्त आ सिंध एक्सप्रेस में भी एडिटोर शायद है जैसे टाइटल है मुल्क मथा वधन कर्ज लिखल है। पाकिस्तान के माशी माहिर तौर हुक्मराना मुल्क की मईशत के कर्ज वसीले बेहतर करने लाए हर साल आईएमएफ का तमाम ही भारी शर्त कर्ज आखण यो कर्ज आवाम से खर्च थे तो अना पर हुक्मरान के ऐश ने शाह खर्चन से जरूर खर्च थे हर हुकूमत पुठी हुकूमत से अजय कर्ज खाने जो एग्जाम्पल मेहड़ी है। एडिटर में लिखल स्टेट बैंक तरफा जारी कल अंग अखर मौजिब साल 2026 तीन पाकिस्तान जो मजमू कर्ज 99,600 अरब रुपये तीन पहुंची हुआ है तैमें वफाकी हुकूमत जो कर्ज है 83,642 अरब रुपया इनायत कर्ज से एक रोक लगी है पर यह सिलसिलो जी जो तीन बरकरार है जिनके रोकने ला शायद सरकार वट का रिथाबंदी कोने कोई को रस्ो है पर सवाल यह है जो हल्दी कर्ज वरतो वे सो जै सबब ला जै कम ला वरतो वे सो खर्च छो न है आखिर हर साल हुकूमत आईएफ ना कर्ज खी कटोरो खी छो पी बीहंदी है आवाम की चवन्दी है ही आखिरी भेरो है पर मुल्क ठहण का वही अज ढी तीन आखिरी भेरो को आयो है नतीजन इतना जो हर शहरी कर्ज में वरतल है हर नौ जाओ बाल मार पिण कर्ज में है हुकूमत आवाम से गारा टैक्स पी हणे महंगाई वधाए पैं मीशत के कागज में बेहतर करने की कोशिश पे करे या ढंडोर पे डे पर हकीकत कुछ अलग ही है सरकार चाहे तो आवाम की जिंदगी सवली ए आरामदायक थी सके थी आईएमएफ जो कर्ज पिण वापस थी सके तो पर मैनेजमेंट बेहतर खपे हुक्मरान की नीयत साफ हुए तो सब मामला साफ थी सकता है सुधरी सकता है पर इत न नीयत साफ है न प्रॉपर मैनेजमेंट है जै सबब आवाम जो हाल बदतरीन है आवाम दाव पी कंदी रहे पर कोई बुधवारो को तहसीन एक्सप्रेस में शायद एडिटर बुधरे टाइटल हो मुल्क मथा वधंदड़ कर्ज
1: कयम मुहार मली रदे।

बेहतरीन सेवा ॾियण जे लाइ इज़तदार अवार्ड सां नवाज़ियो वियो आहे। स्टेट ऑफ हुर्मुस में ॿेड़नि जे आमदरफ़त लाइ ईरान ऐं ओमान पाण में हिकु इक़रारनामे ते रज़ामंद थी विया आहिनि। सदर डोनाल्ड ट्रम्प ओमान खे धमकी ॾिनी आहे त जेकॾहिं अमरीका जी कोशिश में रुकणो विधो वियो त फ़ौजी कार्रवाई कई वेंदी। ऐं बैडमिंटन में भारत जे आयुष शेट्टी वर्ल्ड नंबर वन शी यू क्वी खे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जेका नई दिल्ली में हली रही आहे तंहिं में मात ॾींदे नेक्स्ट राउंड में पहुतो आहे।

तव्हां खां शरणजी सिंधी सर्विस ॿुधियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी वियो आहे। वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गई और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया।

0: लगाई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। एक श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती कुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गई। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस प्लेमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हजार तुझार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन राई और क्रिस्टल राई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता पथेश तुर्की के एंड्रेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। वर्ल्ड में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on the 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and the CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of the National Testing Agency and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all examination processes and submit a report on corrective action taken.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीजा दास के गाए हुए भजन। साथी कलाकार हैं सरोद पर दानिश असलम, सितार पर अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर पशुपति नाथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

ये तो भरी गुड मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तू साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।

जी हाँ दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं, ये दिल ही तो है जो कभी मानता नहीं है, कभी हमें खुशी दे देता है बहुत, तो कभी हमें बड़ा तकलीफ दे देता है। तो ये सब दिल का ही खेल है जो हमें कभी मानने को मजबूर कर देता है, कभी हमें कोई भी बात होती है वो दिल से ही जुड़ी होती है, आप सबको तो पता ही है। तो सच में दिल है कि मानता नहीं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में, फिल्म दिल है कि मानता नहीं से।

जी हाँ दोस्तों, सदमा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर की आवाज में। और जैसा कि गीत इतना प्यारा सा था और आपने सुना कि ये जो जिंदगी होती है इसे हमें वैसे ही अपनाना पड़ता है जैसा वो हमें दिखाती है, जो हमारे सामने होता रहता है वैसे ही हम चलते जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमें किसी और के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए या किसी के लिए भी हमें उस लाइफ को अपनाना पड़ता है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी फिर भी ये रिश्ता दिल के बहुत करीब होता है।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत को सुनने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी ना कि जहाँ पर दो लोग मिल जाते हैं वहाँ टॉपिक कोई भी हो, बस बातें शुरू हो जाती हैं। कहीं उसकी कहानी सुनते हैं, कभी इसकी कहानी सुनते हैं, तो बैठे बैठे कब कहानियों का दौर चलता रहता है, कौन कौन से टॉपिक छिड़ जाते हैं ये हमें खुद को भी नहीं पता चलता है।

दोस्तों आपको ये कार्यक्रम आज का कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जल्दी आपसे मिलेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। तब तक के लिए गीत सुनते रहिए और खुश रहिए और दीजिए।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मोनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
2: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी

0: नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। नरेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
0: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरूवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रूपये की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
3: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
4: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला पेज और लुसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने तक साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमरीका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन ची यू किन को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today. And Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Chi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
6: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS Officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC NYAY Munch, announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the reform munch would continue its agitation until a CBI probe is ordered into the alleged irregularities. The government's decision has also triggered protests among candidates already appointed through the JSSC CGL examination, with several selected candidates gathering outside Project Bhavan in Ranchi and expressing concerns over their jobs in future. The reform munch is expected to announce its detailed position and future course of action today, particularly on the demand for a CBI probe. Nagesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
5: U.S. President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter U.S. election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. We have a report.
3: In a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility, that is Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. It would require voters to provide documentary proof of U.S. citizenship as well as valid government-issued photo identification while registering for federal elections. The White House has described the legislation as a measure to ensure that only U.S. citizens participate in American elections. The U.S. administration has said India and Brazil link voter identification with the biometric databases while the United States largely relies on self-attestation for citizenship. Mr. Trump also highlighted the scale of India's general elections, saying around 642 million people voted in the country's most recent general election. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
5: India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Environment, Forest and Climate Change Ministry said the meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation.
7: The BRICS Environment Ministers meeting will be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. India has identified four priority areas for focused engagements under the BRICS Environment Working Group. These include promoting sustainable lifestyles, afforestation, forest fire management and disaster resilience, circular economy and adaptation. The BRICS Environment Working Group was established in 2015 during the first BRICS Environment Ministers meeting in Moscow. It was envisioned as a platform for BRICS countries to address fundamental environmental priorities, exchange experiences, share best practices and strengthen collective action among member countries. The Contact Group on Climate Change and Sustainable Development was established in 2024 as an effective mechanism for cooperation on climate change issues among BRICS member countries. Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
5: Indian Army Chief General Dhiraj Seth has been conferred the rank of Honorary General of the Nepal Army by President Ramchandra Podel during an investiture ceremony at Sheetal Nivas in Kathmandu yesterday. Nepal Vice President Ram Sahai Prasad Yadav, Foreign Minister Shishir Khanal, India's Ambassador to Nepal Naveen Srivastav and high officials of the Nepal Army and the Nepal government were present during the ceremony. General Seth reached the Himalayan nation on Sunday on an official visit at the invitation of his Nepalese Army counterpart General Ashok Raj Sigdale. The conferral of the honorary rank continues a long tradition that started in 1950, under which Nepal and India conferred the honorary rank of general on each other's army chiefs. In Kerala, direct exports and imports from Vizhinjam seaport will begin today. Chief Minister V.D. Satishan will inaugurate the service at 10:45 a.m. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, will be the chief guest. We have more from our correspondent.
8: Direct exports and imports of cargo through Vizhinjam port in Kerala will begin today, marking a new phase in the port's operations. Until now, Vizhinjam has functioned primarily as an international transshipment hub, where containers arriving on large vessels known as motherships have transferred to smaller vessels for on-way transportation. The Customs Preventive Commission granted permission to handle exports and imports on July 17. Initially, Vizhinjam port will handle only full container load FCL cargo for both imports and exports. The port was dedicated to the nation on May 2nd last year. Midhi M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall in Jharkhand today. Weather agency forecast heavy to very heavy rainfall in Bihar.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स गुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और डिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। तहम सीबीआई जांच का मुतालिबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान और टीडीपीएल एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए जेपीएससी और जेएसएससी के भर्ती इम्तिहान की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वजीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए आईएएस ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असेंबली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविन्द्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। तहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की सीबीआई जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से

Ah, ah, ah, ah.

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका।
2: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: हम लोगों ने अपने जीवन में आशीर्वाद के क्रम में या शुभेच्छा के क्रम में दीर्घायु होने की बात जरूर सुनी है कि लोग हमारे जो मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। वेदों में तो दीर्घायु और आरोग्य के लिए वैदिक मंत्र है जीवेद शरदः शतम्, यानी कि शतायु होने की प्रार्थना है। और सप्त चिरंजीवी श्लोक का जब पाठ किया जाता है तब व्यक्ति रोग मुक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है, इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन क्या वर्तमान समय में स्वस्थ रहते हुए, आरोग्य प्राप्त करते हुए दीर्घायु संभव है? आयु बीतने के बाद शरीर में परिवर्तन का विज्ञान क्या है और लोग अपने लाइफस्टाइल से, खान पान से किस तरह से शरीर विज्ञान पे प्रभाव पड़ता है, उसका लाभ उठा सकते हैं? इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रमोद चंद्र रथ। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रथ ने लगभग 34 वर्षों तक जेएनयू में अध्यापन और शोध से जुड़े हुए कार्य किए हैं और उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड डिजीज, बोन मैरो स्टेम सेल्स एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। प्रोफेसर प्रमोद चंद्र रथ जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: प्रोफेसर रथ, जो उम्र का बढ़ना है, एजिंग की जो बात करते हैं, इसकी वास्तव में वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है?
4: यह बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उम्र बढ़ने के साथ जो है हमारे शरीर का ऑलमोस्ट हर क्रिया प्रक्रिया जो है शिथिल होते रहते हैं और हमारे जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम होते हैं, तो इसलिए एक वृद्ध व्यक्ति मतलब उनको बीमारी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और आज के जो परिवेश है और परिस्थिति है उसमें शहर में और सब जगह ज्यादा प्रदूषण है और खाद्य पदार्थ में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक है शरीर के लिए, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव है। ज्यादातर आप देखेंगे जो युवा है उनके लिए कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में और सब में तनाव बहुत है, तो वो तनाव भी एक कारण है। ये सब मिलके हमको एजिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एजिंग, में ज्यादा उसको बढ़ाते हैं। आप अगर एक गांव का माहौल देखिए तो वहाँ पर पानी और जलवायु सब स्वच्छ है और हो सकता है खान पान भी उतना खराब ना हो क्योंकि वहाँ अपने से लोग उगाते हैं और खाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा संभव नहीं है। और हमारे देश में आप देखिए तो जो आर्थिक सोपान है, आर्थिक अवस्था है, अलग अलग लोगों के बहुत विभिन्न है। बहुत से लोग गरीब है और बहुत से लोग जो अपना चीज पैसा दे के खरीद सकते हैं, तो जो गरीब जनता है उनके लिए सब चीज उपलब्ध कराना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये भी एक कारण होता है कि क्यों स्वास्थ्य है या अपना दैनंदिन जीवन है उसमें बहुत सारे बाधा आते हैं।
3: निश्चित रूप से देखिए कि स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे खान पान पे है और खान पान की शुद्धता, उपलब्धता, खरीदने की शक्ति पे है और उसमें वो एक आर्थिक आधार बनता है। जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, आपने मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ एजिंग इस पर काफी रिसर्च किया है, हमारे शरीर को जीन जो है वो मेन उसका बिल्डअप बनाता है, तो जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में जीन्स और जीन एक्सप्रेशन की क्या भूमिका होती है?
4: जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो जो जरूरी बहुत सारे जीन है, ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ उनका एक्सप्रेशन कम होता जाता है और कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं और हमारे जो गुण सूत्र है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं उसके दोनों एंड पे टेलोमियर एक सीक्वेंस होता है, वो टेलोमियर सीक्वेंस जो है कम होता जाता है जब हम बूढ़ा हो जाते हैं, तो उसके वजह से एक बताया जाता है कि वो जेनेटिक इनस्टेबिलिटी जो है क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है अपने जीनोम में जीन्स को थोड़ा थोड़ा कई तरह का उसमें म्यूटेशन भी होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो सेल में अपना जो उसका फंक्शन है, जो विभिन्न प्रक्रिया है वो भी उससे अफेक्ट होते हैं, तो ये एक कारण है। और एक है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसको सेलुलर स्ट्रेस बोलते हैं, तो उसका एक सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी और भी सोर्स है। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है सेल में उसको डैमेज करते हैं, तो डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट करते हैं, तो इसलिए जो ओल्ड सेल हो जाता है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। और ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ओल्ड एज में ये जो ओल्ड सेल्स एक्यूमुलेट करते हैं बढ़ जाते हैं, अगर उनको शरीर से हटा दिया जाए तो फिर शरीर का अपना जो नेचुरल प्रक्रिया है वो अपने को ठीक कर सकता है, लेकिन वो कैसे होगा उसका ऐसे कोई सीधा रास्ता अभी निकला नहीं है, इस पर रिसर्च हो रहा है।
3: तो क्या यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता रहता है या विज्ञान अपने प्रभाव के द्वारा कुछ उपाय के द्वारा इस प्रोसेस को कम कर सकता है?
4: ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये एक लिमिट के अंदर रहे तब हमारा ओल्ड एज में भी जितना जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो हम पा सकते हैं, लेकिन जब एक लिमिट के ऊपर हो जाए बीमारी होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये देखा गया है कि जो मेटाबॉलिक डिजीज है जैसे डायबिटीज है, आर्थराइटिस है और बहुत सारे डिजीज है, वो ओल्ड एज में ज्यादा देखा आता है, एक उम्र के बाद मान लीजिए 60 के बाद 70 के बाद। और आजकल ये देखा गया है कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी ओल्ड एज में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाते हैं, तो ये एक लिमिट की बात है। तो उसको रोकने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई चीज जो कम हो रहा है मान लीजिए उसको दे दिया जाए, जैसे एक चीज है जिसको कहते हैं एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक मेटाबोलाइट है, ये कम हो जाता है तो बहुत सारे प्रक्रिया बायोकेमिकल प्रक्रिया जो है अफेक्ट होते हैं। तो कहीं कहीं ये रिसर्च हो रहा है कि अगर हम बाहर से एनएडी दे दें तो हो सकता है कुछ हद तक हम जो कमियां हो रहा है उसको रिस्टोर कर सकते हैं
3: और एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं।
4: तो मेन जो गोल है, लक्ष्य है, वो ये है कि वृद्धावस्था में हम फिर भी स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं।
3: आपका जो शोध है वो बोन मैरो स्टेम सेल्स और रीजेनरेटिव मेडिसिन से भी जुड़ा रहा है, तो जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं आजकल काफी उसकी चर्चा है, तो ये क्या है, शरीर में इसका महत्वपूर्ण तो रोल क्या होता है?
4: हमारे शरीर में हर जगह, हर टिश्यूज में, हर ऑर्गन में, जैसे ब्रेन है, लीवर है, बोन मैरो है, सब जगह स्टेम सेल होते हैं। और स्टेम सेल वो सेल है जो एक सुप्त अवस्था में रहता है, जरूरत पड़ने पे वो नया सेल बना सकता है जो कि मान लीजिए खत्म हो गया, जैसे हमारे ब्लड सेल्स जो है 120 दिन में वो रिप्लेस हो जाते हैं, तो जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं वो हमारे ब्लड और इम्यून सिस्टम दोनों को नए सेल्स देते हैं और उस स्टेम सेल को निकाल के लेबोरेटरी में हम दूसरे टाइप का सेल बना सकते हैं। तो अगर हम मसल सेल बना लेंगे या मान लीजिए बोन सेल बना लेंगे, अगर कहीं उस सेल की कमी है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
3: क्या ये जो स्टेम सेल पे जो रिसर्च है और एजिंग की जो बात होती है, उम्र संबंधी जो अपनी बीमारियों की भी चर्चा की, इम्यूनिटी कम होने से प्रॉब्लम होते हैं, तो इसमें चैलेंजेज क्या है इसके पूरी तरह से लाभ उठाने में?
4: एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मॉडल सिस्टम है, जैसे चूहा पे रिसर्च होता है बहुत ज्यादा, वो आदमी में कैसे हम उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि रिसर्च आदमी में नहीं हो सकता है और असली जरूरत जो है क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटिंग में जरूरत है। लेकिन बोन मैरो स्टेम सेल एक ऐसा है, इसमें बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटीज है, आदमी के बोन मैरो स्टेम सेल लेके भी कल्चर करके उससे भी अलग अलग सेल बनाया जा सकता है, एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि कोई एक चीज अगर हम देंगे तो उसका बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट करेंगे या किसी फॉर्म में खाने में देंगे, उसका कोई बुरा असर ना हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है शरीर का जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे कोई मेडिसिन है, कोई कोई मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट भी होता है।
3: बिल्कुल,
4: तो ये भी बहुत बारीकी से इसको स्टडी किया जाता है कि कोई ऐसा चीज ना हो तो अच्छा भी करे, उसके साथ कोई खराब भी करे। ये दो चीज है कि रिसर्च को कैसे आदमी के हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटिंग में कैसे ट्रांसलेट करना है और जो हम अप्रोच कर रहे हैं उसका कोई बुरा असर ना हो।
3: बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान नुकसान होने का

0: एंजाइम ही है। आपके शोध का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। तो इसको अगर एक सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है या हमारे सुनने वालों को समझाया जा सकता है, और शरीर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है?
1: जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है वो एक आरएनए, आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो जीन हमारा होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो है वो नॉन कोडिंग इसलिए है कि वो प्रोटीन नहीं बनाता है, लेकिन वो खुद बनता है और वो बाकी सारे जो सेल के अंदर प्रोसेस होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको रेगुलेट करता है। तो जितना देखा गया अभी तक लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को, उसके रेगुलेशन में उसका रोल है,
0: रेगुलेशन में या फॉर्मेशन में भी।
1: हाँ, रेगुलेशन में क्या होता है, एक तो है सिंथेसिस, जो नया एक चीज से नया चीज बनेगा, दूसरा है एक दूसरे से वो मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं असेंबली, सिंथेसिस, असेंबली और रेगुलेशन। रेगुलेशन में पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन बहुत होता है, जैसे कि उसको एक्टिव करेंगे एक इनएक्टिव स्टेट से या एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव करेंगे। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है बायोलॉजी में, शरीर में, खाली एक्टिव करने से नहीं होगा, अत्यधिक एक्टिव होने से भी खराब होता है।
0: तो ये जो नॉन कोडिंग आरएनए है और एजिंग का जो प्रोसेस है, क्या इसके बीच में कोई संबंध है, और इसके द्वारा क्या लगता है कि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य समस्या का उपचार किया जा सकता है?
1: जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। जो हम लोगों ने स्टडी किया है वो हम लोग देखे हैं ब्रेन में और टेस्टिस में, जो ओल्ड चूहा होते हैं उसमें ये दोनों लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, और ये नया स्पर्म बनाने में टेस्टिस में तीन तरह का सेल बहुत जरूरी है। एक टाइप का सेल है जो मेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसको कहते हैं लैडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं। दूसरा सेल होता है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, वो स्पर्म बनाते हैं। और तीसरा सेल होता है जो नर्सिंग फंक्शन है, ये दोनों का मदर सेल टाइप का, उनको नरिशिंग फंक्शन करते हैं, वो है सर्टोली सेल। ये अलग अलग सेल को हम लोग आइसोलेट करके स्टडी किए हैं, ये सेल में ये नॉन कोडिंग आरएनए कम हो जाता है। तो ये हम लोग दोनों को सोचते हैं कि जैसे ओल्ड एज में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाता है, उसमें इसका रोल हो सकता है। जैसे ब्रेन में दो मेजर फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से दो मेजर हो सकते हैं। एक है लर्निंग एंड मेमोरी, हम नया चीज कैसे सीखते हैं और उसको कैसे याद करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी। फिर दूसरा है एडल्ट न्यूरोजेनेसिस, नया न्यूरॉन सेल बनाना। ये दोनों फंक्शन एक पार्ट है ब्रेन में, उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, उसमें ये जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए कम हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं ये अगर ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए उसमें रिस्टोर कर दिया जाए तो हो सकता है ये दोनों फंक्शन रीगेन हो जाए। तो हम लोगों ने देखा है जो न्यूरॉन को रेगुलेट करने का जो जीन से, उसको ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए रेगुलेट करते हैं। और एक है जो विटामिन ए, एक है जो बाहर से खाद्य पेय के माध्यम से हम लोग लेते हैं, शरीर हमारा बनाता नहीं, उसमें से एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक चीज बनता है रेटिनोइक एसिड, वो ये सब चीज को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, न्यूरॉन के लिए और बहुत सारे सेल के लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए कम हो जाए बहुत सारे हमारा शरीर का हानि हो सकता है, बीमारी हो सकता है।
0: आपने एक और चीज बताई कि जो एज के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है और प्रॉब्लम होता है, तो जो इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन का कोई संबंध है?
1: ये देखा गया कि जितने डिजीज है वो ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि ओल्ड एज में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाते हैं। तो कोई इन्फेक्शन हुआ तो जल्दी क्लियर नहीं होता है, रहता है बहुत दिन तक, उसकी वजह से दिक्कत होता है। तो ओल्ड एज में ये डिजीज का जो ज्यादा होता है उसको कम करने के लिए कोशिश हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन ओल्ड एज में रहता है, हर टिश्यू में वो बढ़ता है, उसके वजह से हमारा बीमारी जो है होता है ज्यादा। जैसे बहुत सारा बीमारी देखा गया है ओल्ड एज में बढ़ता है, उसका कारण देखा गया है कि बहुत दिन तक इन्फ्लेमेशन उस टिश्यू में रहता है, उसके बाद वो बीमारी में एक्सप्रेस करता है।
0: बढ़ती उम्र के साथ एक और प्रॉब्लम जो होती है वो है भूलने की, जो डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, वो है। तो आजकल बाजार में बहुत सारी चीजें, बहुत दवाइयां या थेरेपी आती है जो इसको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या थेरेपी उपचार कहते हैं, तो क्या वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्रभावी है, उसमें आपका क्या विचार है?
1: कुछ नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो हम खान पान में लेते हैं, उसका एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए वो देते हैं। लेकिन बाजार में बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हो सकता है उतना इफेक्टिव ना हो, शॉर्ट टर्म गेन है, डॉक्टर का एडवाइस से ही उसको इस्तेमाल करना।
0: प्रोफेसर प्रमोद चंद्र रथ जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आप

0: अपने जो स्वस्थ दीर्घायु जीवन का जो विज्ञान है, स्टेम सेल्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, नॉन कोडिंग आरएनए, वर्तमान में हो रहे जो अनुसंधान है उसका जो महत्व है, भविष्य में किस तरह से उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सकता है, अनुसंधान के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: ये आकाशवाणी।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशा खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। सुबह का ही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए भजन।

0: कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखकर जन जन के हृदय के तार झुनझुनाए और उन्हें भाव विभोर कर फिल्मी गीत गंगा को समृद्ध किया।
1: सो एक्चुअली फरत ही स्टार्टेड हिज करियर विद म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन एज अ लिरिसिस्ट इन 1963 फिल्म बंदिनी एंड वर्क विद मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स दे इंक्लूड आर डी बर्मन विशाल भारद्वाज ए आर रहमान एज वेल।
0: जी बिल्कुल, अगुलजार ने अपनी फिल्मों में अनगिनत अभिनेत्रियों को भी बेहतरीन किरदारों में पेश किया। सुचिता सिंह के साथ आंधी, रेखा के साथ इजाजत, हेमा मालिनी के साथ खुशबू, किनारा, शबाना आजमी के साथ देवता और शर्मिला टैगोर के साथ मौसम, नमकीन जैसी फिल्में बनाई।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हुए हैं, आप खबरें नशे की जाएंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा के एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद किए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के 12वीं इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौड़ियाल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यूक्यू को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद किए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया, तहम CBI तहकीकात का मुतालबा अभी पूरा नहीं किया गया है। झारखंड हुकूमत ने जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए JPSC और JSSC के भर्ती इम्तिहान की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से JPSC और JSSC के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए IAS अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीकेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक जरूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने भारत के चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मिजाज तस्वीरी शनाख्त दस्तावेजात के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसरे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर सेव एलिजिबिलिटी अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवजा कानून के जरिए विफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त जरूरी मुतारिफ कराने की तजवीज है। इसके तहत राय दहिंदगान को विफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर्ड करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्त कार्ड फराहम करना होगा। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वीं इजलास की मेजबानी करेगा। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल, इत्तेफाकी राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा।

भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पौड़ियाल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम सहाय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद थे। जनरल सेठ नेपाल के अपने हम मनसब जनरल अशोक राज सिगडेल की दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का ओहदा देने की ये रिवायत 1950 से जारी है, जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का ओहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडियल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। जनरल सेठ ने भारतीय सिफारतखाने में सफीर नवीन श्रीवास्तव से भी मुलाकात की, जिसमें नई दिल्ली और काठमांडू के दरमियान जामे ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गुफ्तगू हुई। ये खबरें आकाशवाणी से निश्चित की जा रही हैं। केरल में वजंजीम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो जाएंगी। केरलम के वजीर आला वी डी सतासीन सुबह 11:15 इन खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी एसआईआर के लिए साल 2002 को बुनियाद बनाने से मुतालिक इंतखाबी कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोगमालिया बागची और वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कल एक गैर सरकारी तंजीम एनजीओ की जानिब से दायर की गई मफाद आम्मा की अर्जी पीआईएल को खारिज कर दिया। इस अर्जी में चुनाव कमीशन को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि सिक्किम में जारी एसआईआर के लिए 2002 के बजाय 1993 को बुनियाद बनाया जाए। तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप्ड सिस्टम यानी बाहरी नेटवर्क से मुनक़िते निजाम, डिवाइस जमा करने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। एनटीए से कहा गया है कि वह सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और इसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदामात के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। भारतीय मौसमियात के महकमे आईएमडी ने आज झारखंड में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, शुमाल मशरकी रियासतों, कराईकल, पुदुचेरी, केरलम और माही में जुमेरात तक शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रियासत भर में बेशतर मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर बारिश के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड के गढ़वाल खित्ते के पहाड़ी अजला में इंतहाई शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक रियासत में बारिश का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि किसी शख्स को चढ़ते सूरज के सामने नहीं झुकना चाहिए और यही असल शुजात है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए ये बात कही। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब IRGC ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि वॉशिंगटन ने ईरानी फौज के साथ बातचीत के लिए पसपर्दा राबते का एक चैनल कायम कर रखा है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन चीन के शी युक्यू को मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में हरा दिया। आयुष ने शी युक्यू को 21-14, 13-21 और 21-19

0: बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडिश पर हमारी नशात जारी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।
2: बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अब्दुल रहीम खाने खाना कहते हैं कि एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो उसके बनने के इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आते। भले इंसान लाख कोशिशें कर ले, कितने ही जतन आजमा ले, बतौर शायर रहीम की ये खासियत है कि वो जिंदगी के फलसफे को रोजमर्रा के वाकयात की मिसालों के जरिए बआसानी समझा देते हैं। दूध से दही जमाने और दही को मथकर मक्खन निकालने के अमल से हर खास और आम वाकिफ हैं। अगर दूध फट जाए तो उसे कितना भी मथा जाए लेकिन मक्खन नहीं बन सकता। आज सारफी तहजीब के जमाने में डिब्बा बंद इशिया के चलन के बावजूद लोगों के जहन में ये बात रची बसी है कि फटे हुए दूध से भला कभी मक्खन निकला है। खाना खाना पूरे मुआशरे को अपनी दरसगाह तस्लीम करते थे। उनकी निगाह लोगों के आमाल और रवैयों पर मरकूज रहती थी। उनकी असल फिक्र ये थी कि मुख्तलिफ अफराद के दरमियान बाहमी रिश्ते उस्तवार हों, इत्तेहाद और रवादारी का जज्बा लोगों के किरदार का अहम हिस्सा बने, एक दूसरे के अकायद का एहतराम किया जाए। ये तभी मुमकिन है जब लोगों के बीच बात बनी रहे, यानी भाईचारे के रिश्ते बहाल रहें। जब कोई शायरी जरबुल मसल का दर्जा हासिल कर लेती है तो वो कागज तक महदूद न रहकर अवाम के सकाफती हाफजे का हिस्सा बन जाती है। एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक होती हुई वो लोगों के दिलो दिमाग में ताजा बनी रहती है और लोग खालिक का नाम जाने बगैर उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। रहीम का मजकूरा दोहा भी इसी किस्म का है। जहां कोई बात बिगड़ने का मौका आता है, हमारे लाशऊर में मौजूद ये दोहा फौरन हमारे लबों पर आ जाता है। इस दोहे में बात लफ्ज के माने की कई जहते हैं। बात किसी कलाम को भी कहते हैं। काम या मसले के मानी में भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इस लफ्ज से बात बनने या बात बिगड़ने का मुहावरा बनता है तो मौका व महल के एतवार से इसमें नए नए मानी पैदा हो जाते हैं। मिर्जा गालिब ने भी एक शेर में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया है। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। जिंदगी में एक ऐसा मकाम आता है जहां बात बनाने की तमाम कोशिशें रायगा जाती हैं। इस दोहे में नसीहत का पहलू ये है कि इंसान को अपनी अमली जिंदगी में बहुत दूर अंदेशी और सब्र जब्त से काम लेना चाहिए। हमारे आमाल की जरा सी लग्जिश बात बिगड़ने की वजह बन सकती है। एक बार जब बात बिगड़ी तो बिगड़ती ही चली जाती है और इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। इंसान अगर अपने कौल और फैल में यकसानियत का लिहाज रखे तो बात बिगड़ने की नौबत ही न आए। सबसे बड़ी नसीहत हम महाभारत से ले सकते हैं। जब कौरव और पांडवों के बीच बात बिगड़ी तो कभी नहीं बनी और दोनों फरीकों में से कोई भी राज करने के लिए बाकी न रहा। कुरुक्षेत्र की जंगे अजीम बात बिगड़ने का ही नतीजा थी।

0: मुजफ्फर वारसी का कलाम पेश कर रही थी लता मंगेशकर और इस गजल के साथ ही हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। पेश खिदमत है पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसके छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति।
3: श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के संस्करण की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं ने भारत का परचम दुनिया में फिर लहराया, फिर भारत का झंडा शान से फहराया और देश की झोली में तमाम मेडल की टैली लाकर भारत को फिर गौरवान्वित किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुरुआत में मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का नाम कौन नहीं जानता और एक दशक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो आज देश के तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए खेल एक प्रेरणा स्रोत है। तो इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में फिर से स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है बल्कि देश के विभिन्न वेटलिफ्टर्स के लिए एक मिसाल कायम की है। तो आइए जानते हैं मीराबाई चानू की ये सफलता और उनकी जीवन की कहानी।
4: कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर आज कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बचपन में मीराबाई अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में लकड़ियां लेने जाती थी। यही वह समय था जब उनकी शारीरिक ताकत ने परिवार का ध्यान खींचा। आगे चलकर उन्होंने वेटलिफ्टिंग को अपना खेल बनाया और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू की। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने सिल्वर जीता था। इसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंगम में उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। अब 2026 में वही मीराबाई फिर ग्लासगो लौटी। इस बार उनके सामने सिर्फ पदक जीतने की चुनौती नहीं थी, वह लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने उतरी थी। फाइनल में शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। स्नैच के पहले प्रयास में 82 किलो वजन नहीं उठा सकी, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने वापसी की और फिर 85 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 105 किलो वजन उठाया, कुल वजन पहुंचा 190 किलो। गोल्ड पक्का हुआ और साथ में नया गेम्स रिकॉर्ड भी। मेडल जीतने के बाद मीराबाई ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे कोच विजय शर्मा को दिया।
5: बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश।
4: उन्होंने बताया कि करियर के दौरान कई चोटों के बावजूद परिवार ने उनका हौसला बनाए रखा। उनकी यह जीत सिर्फ मणिपुर या भारत के लिए एक गोल्ड नहीं था, यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने सालों तक खुद को लगातार बेहतर बनाया और हर बार बड़े मंच पर वापसी की। मीराबाई ने ग्लासगो में फिर साबित किया कि अनुभव, अनुशासन और हौसले के दम पर उम्र नहीं, प्रदर्शन मायने रखता है। मणिपुर की इस बेटी ने एक बार फिर वजन उठाया, रिकॉर्ड बनाया और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर पहुँचा दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
3: श्रोताओं, इन एथलीट्स की जो कहानियां हम सुनते हैं वो सचमुच सफलता की कहानी तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन भी रहा है, संघर्ष भी रहा है। वो कहा जाता है ना, संतुष्ट नहीं वो जीवन पथ में सदा सफल रस पीता है, संतुष्ट वही जो कष्ट भोगकर सुखमय जीवन जीता है। तो हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी कहानियां भी ऐसी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब वो अपनी इन चुनौतियों से संघर्षों से पार पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाते हैं तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है और देश भर के करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अब ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं त्रिपुरा की अस्मिता डे की। अस्मिता डे ने भारत के जूडो

0: खेल का इतिहास बदल कर रख दिया है और उन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलो वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने जिस तरह से तमाम युवाओं को प्रेरित किया, उसी तरह से अस्मिता दे ने भी तमाम युवाओं को प्रेरित किया और जूडो क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं उनके लिए मिसाल बन गई। तो आइए फिर से हम एक और प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं जिन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना खेल का एक नया इतिहास रचा है।
1: छोटे से गांव से निकलकर अस्मिता डे ने ग्लासगो में भारतीय जूडो का इतिहास बदल दिया। महिलाओं के 48 किलो वर्ग में अस्मिता ने कनाडा की हेडी कवाच को हराकर गोल्ड मेडल जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मुकाबला आसान नहीं था, फाइनल गोल्डन स्कोर तक पहुंचा जहां अस्मिता ने बाजी अपने नाम की, लेकिन इस जीत के पीछे लंबा संघर्ष है। अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक थे, परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। अस्मिता ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से नहीं बल्कि 800 मीटर दौड़ से की थी। जलस्तर के एक ट्रायल में जूडो से जुड़ने के बाद उन्होंने इसी खेल को अपना करियर बना लिया। फिर उनकी जिंदगी में बड़ा झटका आया, 2025 में पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद अस्मिता ने जूडो छोड़ने तक का फैसला सोच लिया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और अपना अभ्यास जारी रखा। ग्लासगो में जब उन्होंने गोल्ड जीता तो ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। जीत के बाद अस्मिता ने कहा कि सफर में जिन लोगों ने उनका साथ दिया वे उन सभी की शुक्रगुजार है।
2: ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
1: उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया जिसने उन्हें अपने परिवार की मदद करने का सहारा दिया। एक छोटे गांव से निकली अस्मिता अब भारतीय जूडो की नई पहचान बन चुकी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी।
0: श्रोताओं, हाल ही में जो देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इसके अवसर पर नागालैंड की चार हस्तियों और समाज सेवियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये चार हस्तियां नागालैंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अपना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान दे रही हैं। तो आइए इन हस्तियों के बारे में जानते हैं और उनसे ही सुनते हैं उनके अनुभव। ये रिपोर्ट हमें भेजी है हमारी संवाददाता असुनो ने कोहिमा से।
3: नागालैंड के चार लोगों के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गर्व और सम्मान का अवसर रहा। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला था। इनमें कोहिमा के कुजामा गांव की केविरनु केरा भी शामिल थीं, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की लाभार्थी हैं।
4: It is a matter of great pride and honor for me to attend the at-home reception to be hosted by the Honorable President of India on the occasion of Independence Day at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. This invitation has been extended in recognition of the significant and positive impact that university development through the DBUGKY program has had within my community. As a beneficiary of the DBUGKY, my achievement and contribution has played an inspiring role in encouraging others to pursue skills development and livelihood opportunities. This recognition has motivated me to work harder and contribute more to our society.
3: इसी तरह दीमापुर के ख्रोलो नारो को भी राष्ट्रपति भवन के समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वे क्रिएटिव क्राफ्ट्स चलाते हैं जहां बांस से फर्नीचर और विभिन्न हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं। उनके इस काम का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में भी किया था।
5: Makan presiden berah, kami jadi mohon kami negara ini dapat lebih populer di bulan 15 Agos 2020 ini sebagai negara chance pakai kerana di kami ke invitation pakai kerana kami jadi negara ini lebih populer di negara ini lebih banyak pelajar.
3: कोहिमा के केपोजो कुपूह भी उन चार प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्हें इस विशेष समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वे सेंट जोसेफ कॉलेज जखामा से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय विकसित भारत युवा संसद में उन्हें बेस्ट रिस्पॉन्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
6: नमस्कार, मैं केपोजो कुपूह और राष्ट्रपति भवन से 15 अगस्त के एट होम समारोह का आमंत्रण मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। एक युवा और एक छात्र होने के रूप में ये बस मेरे लिए केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि नागालैंड के युवाओं के लिए एक गर्व का विषय है। मैं इस अवसर के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माई भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह अवसर मुझे देश और अपने राज्य के लिए और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: चौथी आमंत्रित लोलिका शोहे थी। वे NSS स्वयंसेवक हैं और युवा आपदा मित्र योजना की लाभार्थी भी हैं। आपदा के समय लोगों की मदद करने और समुदाय को आपदा के लिए तैयार करने में युवाओं की बढ़ती भूमिका को उनका योगदान दर्शाता है।
4: It is a matter of immense pride and honor for me to attend the at-home reception hosted by the Honorable President of India. This invitation was sent through the Abda Mitra for the training camp conducted at the Home Guard Training Center at Dolvi on the month of March this year. As a beneficiary of the Abda Mitra, this training camp has taught me skills such as CPR, first aid, building evacuation and many more, which will be helpful in times of disaster. This invitation has brought me and my family great pride and honor, inspiring me to serve the community more and be prepared in case of disasters.
3: राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह में शामिल होने का अनुभव इन चारों के लिए खुशी, गर्व और सम्मान से जुड़ा रहा। इन चारों को मिला यह निमंत्रण देश की विविधता और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का भी उदाहरण है। इस वर्ष राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह के निमंत्रण पत्र के डिजाइन में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीवंत लोक कला परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। नागालैंड के इन चार प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति भवन का यह अनुभव सिर्फ एक समारोह का हिस्सा बनना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर अपने राज्य और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी था। असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर।

0: श्रोताओं, हाल ही में त्रिपुरा में एक अनोखी पहल हुई। चकमा भाषा और लिपि दिवस मनाया गया था और चकमा भाषा और लिपि दिवस के अवसर पर जो चकमा की सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है, उसको प्रदर्शित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर रहा। और इस अवसर पर अगरतला में जुलूस का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन हुआ। विभिन्न कलाकारों ने, लेखकों ने और जो विभिन्न रचनाकार हैं और चकमा भाषा और लिपि से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं चकमा भाषा और लिपि के बारे में और किस तरह से इस दिन के मनाए जाने से इस लिपि और भाषा का सांस्कृतिक महत्व उभर कर सामने आया है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
1: त्रिपुरा हाल ही में चकमा समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा, रंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर नजर आया। पहली बार मनाए गए चकमा भाषा और लिपि दिवस का उद्देश्य चकमा भाषा, उसकी लिपि, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। कार्यक्रम में आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को पहुंचाने और भाषाई विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
2: चकमा समुदाय भारत की धरती से दिल और आत्मा से प्रेम करने वाला एक शांतिप्रिय, देशभक्त और भारतीय होने पर गर्व करने वाला समाज है। पीढ़ियों से हम भारत के साथ अपने भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध को गर्व के साथ संजोए हुए हैं। भारत के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता के समय से ही चकमा समाज भारत के असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निवास करता आया है और इन राज्यों में चकमा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा मानना है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और परंपराओं से प्रेम करना है तथा साथ ही भारत के प्रति गर्व और समर्पण की भावना रखना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि अपने जड़ों से जुड़े रहकर ही हम और अधिक आत्मविश्वास के साथ भारत के समृद्ध और विविध संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं।
1: अगरतला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत रंगारंग जुलूस के साथ हुई। छात्र छात्राओं, कलाकारों

0: चकमा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक पोशाक और आभूषणों के साथ इसमें हिस्सा लिया। जुलूस ने त्रिपुरा की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता का संदेश दिया।
1: चकमा भाषा हमारी लिपि दिवस का आयोजन हमारे लिए गर्व का विषय है। अपनी भाषा और संस्कृति को आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक चकमा भाषी होने के नाते मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से गर्व और खुशी हो रही है। हमारी राज्य सरकार चकमा भाषा साहित्य और संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सभी को नमस्कार।
0: इसके बाद रविन्द्र भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हर समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान को आवश्यक बताया।
2: गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू द अदर सब ट्राइब्स ऑफ आवर स्टेट। वी हैव 19 सब ट्राइब्स ऑल टुगेदर इन आवर स्टेट। वी आर कमिटेड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर सब ट्राइब्स इन आवर स्टेट।
0: पहला चकमा भाषा और लिपि दिवस केवल एक भाषा का उत्सव नहीं बल्कि समुदाय की पहचान, इतिहास और परंपराओं को सहेजने की पहल है। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज की परंपराएं, ज्ञान और यादें पहुंचाती हैं। ऐसे में चकमा भाषा और लिपि को जीवित रखना समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से सीधे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी ने ये संदेश दिया कि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा सीखे, उसका इस्तेमाल करे और अपनी विरासत पर गर्व करे। साथ ही समारोह ने त्रिपुरा की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी सामने रखा। चकमा भाषा और लिपि दिवस का संदेश स्पष्ट है, किसी भाषा को बचाना उसके साथ जुड़ी पहचान और विरासत को बचाना है। इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना समुदाय के साथ साथ समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
3: श्रोताओं, सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति सिक्किम की एक बहुत बड़ी विरासत है और यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित करती है। तो सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति का प्रदर्शन अभी हाल ही में एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला और इस समारोह की एक खास बात रही कि यहाँ पर तुंगुक नाम का एक जो महत्वपूर्ण वाद्य है, इसके वादकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 32 वादकों ने एक साथ तुंगुक वाद्य बजाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया और एक अलग ही माहौल का प्रदर्शन देखने को मिला। ये वाद्य GI टैग प्राप्त वाद्य है और लेपचा संगीत एक मधुर संगीत है। आइए हमारे संवाददाता के इस विशेष रिपोर्ट में इस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में जानते हैं और साथ ही लेपचा संगीत की धुन भी आपको इस रिपोर्ट में सुनने को मिलेगी। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
4: समृद्ध लेपचा संगीत परंपरा को तेंडोंग लोरूम फात 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी पहचान मिली। पारंपरिक तुंगबुक वाघ बजाने वाले सबसे बड़े समूह ने नया रिकॉर्ड कायम किया।
5: दिस इज एन अटेम्प्ट बाय सिक्किम टू सेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ लेपचा म्यूजिशियंस प्लेइंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट तुंगबुक।
4: 7 अगस्त को गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित योंगथोंग ओपन मार्केट में 32 कलाकारों ने एक साथ तुंगबुक बजाया। GI टैग प्राप्त यह पारंपरिक वाघ लेपचा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।
5: ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स काउंट विद मी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go!

0: बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़े तुंग बुक वादकों के समूह का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को मनन केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान सौंपा गया। यह पहल योंग थोम सीजन 3 के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लगभग भुलाए जा चुके तुंगबुक वादन को फिर से जीवंत करना और युवा पीढ़ी को लेपचा लोक संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तेंदोंग लोरू फात लेपचा समुदाय के मयेल ल्यांग यानी सिक्किम प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने विकास के साथ साथ भाषा पारंपरिक ज्ञान संगीत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बोंग थिंग की पारंपरिक रस्मों सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लेपचा विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक सिक्किम की स्वदेशी परंपराओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मोहिनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक।
1: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप ए बी और सी के सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए एक समान पात्रता मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके तहत आवेदकों के लिए तीन अनिवार्य शर्तें तय की गई है, जिनमें स्थायी निवासी इंडिजिनस एपीएसटी यानी राज्य के मूल निवासी एवं एपीएसटी की पात्रता और इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेज यानी स्थानीय जनजातीय भाषा का ज्ञान शामिल किया गया है। कैबिनेट ने प्रिंसिपल और डीटीएससी के पदों पर पदोन्नति के लिए एक बार के विशेष छूट के तहत 2 वर्ष के सर्विस रिलैक्सेशन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए भी एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट तथा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी जानकर समय मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थ्यांग न्यूंग्यम ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विविध परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियाँ वहाँ की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती हैं। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं, जो हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से भेजी है।
3: नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति ख्याम न्यूंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। त्वेनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से ख्याम न्यूंगम जनजाति निवास करती है। ख्याम न्यूंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ख्याम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुमकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है। लोक कथा के अनुसार ख्याम न्यूंगन लोगों की उत्पत्ति ख्यामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और ख्यामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाक क्षेत्र तथा म्यांमार में चिनद्विन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए। नोकलाक का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। खियाम नियुंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही

उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती करता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार ख्याम न्यूंगन संस्कृति की धड़कन है, जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है, ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं, जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। त्योस्कुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। यह सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा खाओ जाओ सीए होक आह, जो जनवरी में मनाया जाता है, और बियाम, जो अगस्त में मनाया जाता है, भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। ख्याम न्यूंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती हैं, जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसा है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं, जिनमें बीज, शंख और कभी कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही ख्याम न्यूंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार।

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: मिले।
1: हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

संपूर्ण सिंह कालरा उनका असल नाम, और 18 अगस्त आज ही के दिन 1934 को झेलम जो अब पाकिस्तान में वाकई है वहां पैदा हुए। और वो न सिर्फ एक उम्दा शायर बल्कि एक उम्दा गीतकार भी हैं। उनके नाखूनों में जिंदगी की हकीकत और वो तमाम बातें जो हमारी समाज में आसपास मौजूद हैं बखूबी उनका ताना बाना वो बुनते हैं अपनी शायरी में। तो आज के प्रोग्राम में उन्हीं के लिखे चंद नगमे हम आपकी नजर करना चाहेंगे। यह है प्रोग्राम की पहली पेशकश। हालांकि सफर शुरू हुआ था उनका काबुलीवाला से, लेकिन यह नगमा है बंदनी फिल्म का। ये भी उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक फिल्म है जिस पर उन्होंने खूबसूरत नगमा लिखा लता मंगेशकर की आवाज में।

ए संजू, ए बिरजू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: की बात।
1: गुलजार साहब ने शायरी के अलावा कई टीवी सीरियल्स के लिए मकालमे भी लिखे, उनमें काबिले जिक्र हैं सीरियल जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड, हेलो जिंदगी, गुच्छे और पोटली बाबा के। बच्चों के लिए कई खूबसूरत नगमे भी लिखे, और वो नगमा कैसे भूल सकते हैं, जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वगैरह वगैरह। आपकी शादी अदाकारा राखी से हुई, आपकी साहबजादी मेघना गुलजार ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई। फिलहाल जस्ट मैरिड, दस कहानियां, तलवार, राजी, सैम बहादुर और छपाक पर इस फिल्म में गुलजार साहब ने नगमे भी लिखे।

0: गुलजार की पैदाइश 18 अगस्त सन 1934 को झेलम पाकिस्तान के एक छोटे से शहर दीना में हुई। उनका असली नाम संपूर सिंह कालना है। शुरू शुरू में उन्होंने गुलजार दीनवी के नाम से भी लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में गुलजार ही अपना तखल्लुस कर लिया। गुलजार का ताल्लुक एक सिख खानदान से है। उनके वालिद सरदार मक्खन सिंह दीना के मशहूर आदमी थे। वो कपड़ों के बड़े ताजिर थे। दीना शहर में उनकी कई दुकानें थीं। गुलजार की परवरिश में उनके वालिद का अहम रोल रहा, क्योंकि कमसिनी में ही गुलजार के वालिद का साया सर से उठ चुका था। मेघना गुलजार उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताती हैं।
1: वो सिख फैमिली के सरदार मक्खन सिंह कालरा के यहाँ पैदा हुए और एक लड़के के तौर पर सिख रिवायत के मुताबिक उनके बाल लंबे थे। उनके पिता यानी मेरे दादा उनके केस बनाया करते थे, क्योंकि पापी की माँ उनके कमसिनी में ही गुजर चुकी थी।
0: गुलजार की इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल चक अब्दुल खालिक से हुई। स्कूल के जमाने से ही उनका झुकाव शेर व शायरी की तरफ था। गुलजार स्कूल के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। हिंदुस्तान की क्लासिक की म्यूजिक के दिलदादा थे।

0: गुलजार साहब को अपने शहर दीना से बेपनाह मोहब्बत है। कहा तो ये जाता है कि गुलजार अभी तक उसी खोए हुए फिरदौस में आबाद है। वतन से अपनी दिलचस्पी का इजहार एक नज्म में वो कुछ इस तरह करते हैं, अगर ऐसा भी हो सकता
1: तुम्हारी नींद में सब ख्वाब अपने मुंतकिल करके तुम्हें वो सब दिखा सकता जो मैं ख्वाबों में अक्सर देखा करता हूं। ये हो सकता अगर मुमकिन तुम्हें मालूम हो जाता तुम्हें मैं ले गया था सरहदों के पाप दीना में, तुम्हें वो घर दिखाया था जहां पैदा हुआ था मैं, जहां छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था मिटाता था। दिखाई थी तुम्हें वो खेतियां सरसों के दीने में कि जिसके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे। वही एक रास्ता था डालियों का जिसपे मीलों तक पड़ा करते थे झूले सौंधे सावन के, उसी की सौंधी खुशबू से महक उठती हैं आंखें जब कभी उस ख्वाब से गुजरूं।

0: ताश का चलता कुआं भी तो दिखाया था।
1: गुलजार साहब को फुनूने लतीफा से खास दिलचस्पी थी और ये दिलचस्पी उन्हें विरसे में नहीं मिली बल्कि खुद के अंदर से पैदा हुई। वरना घर के लोग तो चार्टेड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे गुलजार को। गुलजार साहब इसकी वजह बयान करते हुए कहते हैं, मेरे अंदर एक तन्हाई थी जो मुझे बेचैन रखती थी, उससे वो पूर्ण हो जाती थी। अगर आर्ट ने रहनुमाई न की होती और मेरे जज्बात को उस्तवार करने में मेरी मदद न की होती तो मैं पूरे तौर पर गुमराह हो गया था। गुलजार साहब की साहिबजादी मेघना गुलजार अपने वालिद की अदब से दिलचस्पी के बारे में लिखती हैं।
2: एक अदीब बनने की उनके अंदर इतनी चाहत थी कि उन्होंने अपने लिए एसएस गुलजार नाम की एक जाली मोहर बनवाई और मोपासा की कहानियों के सरे वक्त पर असल राइटर के नाम की जगह छापकर ये देखना चाहा कि मेरा नाम कैसा लगेगा। इतनी ढेर सारी किताबों के बाद भी उनके पास वो किताब अब भी मौजूद है।
1: गुलजार साहब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक गैराज में मोटर मैकेनिक के तौर पर की। ख्वाबों की तकमील के लिए उरूसुल बलाद मुंबई में किस्मत आजमाने लगी। यहां गुलजार ने मशहूर हिदायतकार बिमल रॉय की निगरानी में अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। इसी दौरान अपने वक्त के कामयाब गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बंदनी के लिए गुलजार से नगमे लिखने की फरमाइश की। मौसीकार एस डी बर्मन की धुन और इस नगमे के अपने लबो लहजे और लफ्जियात ने गुलजार को फिल्मी नगमा निगारी में एक नई पहचान दी।

ये लो बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है, ये लो बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है, ये लो बचा लो यहीं से उठेगी जस्तुजू फिर बगुला बनकर, यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर, कहीं तो अंजाम और जस्तुजू के सर मिलेंगे। अभी न पर्दा गिराओ ठहरो, अभी न पर्दा गिराओ ठहरो।

माचिस फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे हरिहरन सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थे गुलजार। और लीजिए मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, बंटी और बबली फिल्म का नगमा, आवाजें अलीशा चिनाय, शंकर महादेवन और साथियों की हैं।

0: बंटी और बबली फिल्म का नगमा सुन रहे थे अलीशा चिन्ना, शंकर महादेवन और जावेद अली का गाया हुआ। इस नगमे के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुकुल जी। पिछले दो दशकों में ब्रिक्स एक आर्थिक संवाद मंच से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स की भूमिका में बदलाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कैसी संभावनाएं बनती हैं?
3: देखिए, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो रूस ने चाइना और भारत से ये कहा था कि हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर है या जो जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होता है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और वो हमारे ऊपर सैंक्शन डालते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन पड़ रहे थे और उनके ऊपर नहीं पड़ रहे थे, उनको संभावना थी। तो वहां से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जब ये जो चीज एक छोटा सा ग्रुप तीन देशों का बना, उसमें फिर ये थिंकिंग हुई कि अन्य विकासशील देशों को भी जोड़ा जाए। तो उसमें ब्राजील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, और उसकी वजह से इसका आकार सिर्फ एशिया यूरोप तक नहीं सीमित रहने के बजाय एक वैश्विक इसका आकार बन गया। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 11 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो विकसित होते हुए देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सबको मिलाकर विश्व का आर्थिक संपत्ति है उसमें आधे से ज्यादा ब्रिक्स में आ गई है। तो एक इनके ऊपर एक भार भी है कि अन्य देशों को एक दिशा दें, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, और अब हम दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब उस बराबरी के मुकाबले को करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि एक विजन या एक थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अभी तक तो ये था कि ये ठीक नहीं है, अब पहली बार भारत ने एक दिशा ये दी है कि हमको किस बात पर जोर देना चाहिए, किन चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। 170-180 विकासशील देश हैं, तो वो इस बैठक का ये महत्व है। और ये एवोल्यूशन कहिए या ये जो बदलाव आया है वो इसलिए भी आया है कि विश्व में भी अब एक बदलाव आ चुका है। जहां पहले एक तरफ आर्थिक या सैनिक या पर्यावरण अलग अलग माने जाते थे, अब ये बात सामने आ रही है कि सब सम्मिलित हैं। अगर पर्यावरण को दृष्टिकोण को हम नहीं जोर देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाकर हमारी सैनिक शक्ति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक शक्ति भी हर देश के पर्यावरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनती है। अगर पर्यावरण में समस्या होगी, शहरों में समस्या होगी, या तो हमारा आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा, ये चीज सामने आ गई है। पहले ये कहा जाता था या जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं वो ये कहते थे कि हिमालय की नदियों में पानी कम होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम गिर रही है। अब ये सामने आंकड़ा आ रहा है कि हिमालय की नदियों में पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा था, पर यूरोप की नदियां सूखती जा रही हैं। ये चीज आज विश्व के सामने, यूरोप के सामने आ गई है कि उनकी नदियां सूखती जा रही है पर हमारे यहां वो समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत ने अगर एक दिशा देता है कि अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे यहां पानी क्यों कम हो रहा है, या जंगल ठीक से लगे, या हम वेस्ट कम करें, तो लोग सुनने को तैयार हैं।
2: जी बिल्कुल जी, भारत की बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर विशेष तौर पर महत्व दिया जा रहा है। तो इसमें मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिस पर हम अभी से नहीं सदियों से जोर देते आए हैं।
3: देखिए, प्रधानमंत्री बहुत पहले ये बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमको ये नहीं देखना है कि हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस जिस पर जोर दे रहे थे, हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत फर्क है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जाना है। हमको देखना है कि जैसे जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, तो उसमें जो वेस्ट है या जो चीज हम बर्बाद करके फेंक देते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। ये आंकड़े सामने आए हैं कि वेस्ट में आधे से ज्यादा खाना फेंका जाता है
2: जी,
3: ये नहीं कि खराब हो जाता है क्योंकि सड़ जाता है क्योंकि तापमान ऊंचा है, जैसे हमारे यहाँ होता है कुछ खाना जो मंडियों में नहीं उपयोग में आता है, पर ये चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पे जो दुकानों से लोग खरीद के लाते हैं आधे से ज्यादा वो फेंक देते हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही थी कि देखो हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास, और इसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना है पर अपनी लाइफस्टाइल, जो हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं। इसी से फिर आगे चलता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, और अगर हमको कहा जा रहा है कि आप अपना विकास इस तरह से करिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर असर कम पड़े, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका असर हमारे जनजीवन में हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी कहा था 2018 में, सबसे पहले कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि हम बर्बादी ना करें, और हम जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम अपना विकास रोकें, हम एक दिशा दे रहे हैं कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। और भारत तो इस स्तर पर है कि जैसे चाइना का विकास अब विश्व में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहा है, और वो एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल है या तेल या कोयला जो है उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं उनकी तुलना में, पर भारत के जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं वो वर्ल्ड की एवरेज से भी कम है। तो भारत ये कह रहा है औरों से कि देखो ये संभव है कि एक नई दिशा में हम विकास कर सकते हैं अपना, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वही किया जाए जो विकसित देशों ने किया, और इसकी वजह से हमारे ऊपर आप दबाव मत डालिए पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर भारत ने इस बैठक में आगे बढ़ाया है लाइफ स्टाइल करके कि भाई

0: कोई अगर हमको कुछ करना है तो हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो देखें, और हम इस पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको हम फेंके नहीं, पर हम ये देखें कि उसका फिर इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: आपने लाइफस्टाइल की बात की तो हमारे यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ, इस अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विकास करने की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स देशों के बीच में लाइफ जैसी जो व्यवहार आधारित पर्यावरणीय मॉडल की बातें हैं उनको व्यापक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है और इसके लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता होगी?
0: देखिए, इसमें सहयोग तो यह है कि भारत ये कह रहा है कि कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, हम आपस में ऐसा नियम करें या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए ऐसे सिद्धांत बनाएं कि हम वेस्ट ना करें। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि विकसित देश ये कहते थे कि हम लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएंगे जो सबको पालन करना पड़ेगा। भारत ये नहीं कह रहा है कि ऐसे नियम बने जिसका सबको पालन करना होगा। भारत ये कह रहा है क्योंकि हमारे सभी देशों में नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, तो इन शहरों का आकार कैसा हो, हम अपना दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयास करें कि हम वेस्ट ना करें। तो भारत ये नहीं कह रहा है कि इसको एक कानून के रूप में हमको अपनाना चाहिए, पर इसको हमको एक स्टैंडर्ड कहिए या हमको एक दैनिक जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकार भारत ने कहा है इसी के लिए नहीं अन्य चीजों में भी, कि कोई नियम नहीं बनना है, कोई रेगुलेशन या फोर्स नहीं होना है, हमको स्वतः ही करना है क्योंकि ये हमारे हित के लिए है, तो ये एक्सेप्ट होगा।
1: अभी आपने सतत जीवन शैली की बात कही है तो ब्रिक्स की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में भी सतत जीवन शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आम नागरिकों के जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सके, जैसे कि आपने आर्थिक विकास की बात सबसे पहले कही थी।
0: देखिए, अभी तक तो थिंकिंग ये थी कि जो विकसित देशों ने मॉडल अपनाया है या जिस प्रकार से उनका विकास हुआ है सबको वही तरीका अपनाना चाहिए। चाइना का विकास हमारे से पहले हुआ है
1: जी,
0: उनने एक दिशा दिखाई कि भी जरूरी नहीं है कि उसी तरह से शहर बने, उसी तरह से हम लोग एनर्जी उत्पादन करें, कहते हैं सोलर और विंड की तरफ जाइए। तो भारत का एक योगदान इस तरफ नहीं हो रहा है कि हमारा उत्पादन में हम क्या परिवर्तन करें जो चाइना ने किया है। भारत ये कह रहा है कि जो हमने नगरीकरण कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें हमको विकास परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने आगे कुछ विचार रखे हैं इस बैठक में कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, उससे बचाव करना है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नदियों में उतना कमी नहीं आ रही है जितना यूरोप में आ रही है, तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है जो उनकी प्राथमिकताएं हैं कि बर्फ कम गिरेगा, बारिश कम होगी, नदियों का पानी कम होगा। हमको ये देखना है, पेड़ लगाओ, हमको ये देखना है कि सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, पर हमको जो जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, जो उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो हम पेड़ से अपना दृष्टिकोण हटाकर जमीन की तरफ ले जाएं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम ये ना देखें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ये देखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको देखें। तो एक नई दिशा ये दी जा रही है इस बैठक में कि समस्या तो वही है, उसका निदान क्या होगा उसमें हमको ये देखना है कि वो निदान ऐसा ना हो कि जो उन्होंने हमसे कहा है जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है या उनकी परिस्थितियों को देखता है, पर उसका निदान हमको ये देखना है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जा सकता है। जितने भी ब्रिक्स देश हैं या अन्य विकासशील देश हैं, सब में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग देहात में अभी रहते हैं और रहते रहेंगे। तो इसलिए जो नई दिशा दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाइफ से शुरू किया और आगे भी कहा जा रहा है कि जो हमने परिभाषा हमने अपनाई थी उनके कहने पर, उसको हमको एक नई दिशा देनी है, वो आगे बढ़ रही है।
1: मुकुल जी, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी केंद्र हो जहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिशें की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आप

0: घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आपको क्या लगता है कि कैसे ये परिणाम अपना देंगी और क्या आवश्यक है उनको प्राप्त करने के लिए?
1: देखिए, भारत का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने वहां अपना मिसाल दिया है कि जो ग्लोबल एमिशन का एवरेज लेवल है उससे भारत कहीं कम है और विकास हो रहा है भारत में। तो उसी धारा को लेकर इस ब्रिक्स समिट में जो सूचना मिल रही है कि जो अधिकारी स्तर पर बैठक हुई है या हो रही है उसमें ये बात आई है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सिर्फ घोषणा तक न रखें पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, इसको हमको लागू करना है
0: जी।
1: तो वहाँ ये बात आ रही है कि फिर मिसाल से जो बात आई कि साहब ये जो जंगल में आग लगती है, तो ये बात आ रही है कि उसमें टेक्निकल नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए और उसको हम शेयर करें। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की बात की कि हम वेस्ट ना करें, तो ये आया कि कुछ उसके कुछ नियम बनने चाहिए, कानून नहीं बनने चाहिए पर कुछ नियम बनने चाहिए। और ये बात आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारे गांव में हर देश की सभ्यता में जो जिस तरह से ये रहते थे लोग, उसको भी हम एक आंकड़े में लाएं। तो एक तरफ से तो ये है कि नई दिशा है, दूसरी तरफ से ये है कि टेक्निकल लेवल पर, डेटा की लेवल पर भी चर्चा की जा रही है कि इसमें भी एक समानता आ जाए ताकि हम आपस में इसको शेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबको फायदा हो, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी एक नई दिशा आई है कि एक्सपीरियंस शेयर करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमको विकसित देशों से सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने पास ही इतने साधन है, इतना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और हमारे पास डेटा को एकत्रित करके हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नई बात आई है इस बैठक में।
0: मुकुल जी, जंगल की आग का जिक्र किया आपने, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो हमें नजर आता है कि भारत में भी जंगल की आग का सामना करना पड़ता है लोगों को और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जंगल की आग लगती है, कई सारे जंगल बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि एक जंगल खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है लेकिन राख होने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। ये जो स्थिति है इससे निपटने के लिए किस तरह की प्रणाली या फिर किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह से संस्थागत सहयोग किया जा सकता है या कैसे बदलाव लाया जा सकता है कि हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना भी ना करना पड़े और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हो?
1: देखिए, जंगल में आग तो हर जगह लगती है। देखा गया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तापमान की वजह से जंगल में भीषण आग लगी है। भारत में विशेषता यह है कि भारत अकेला देश है विश्व में जिसमें फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है
0: जी।
1: किसी भी देश में फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं माना गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनकी क्षमता, उनकी सोच अन्य देशों से फर्क है। तो इसलिए इस बैठक में जो बात आ रही है कि अर्ली वार्निंग पर जोर दिया जाए कि हम क्या प्रयास करें, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ पहले से आइडिया हो जाए कि यहाँ आग आएगी, इस तरह से हवा के प्रकोप से बढ़ेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर भारत में अच्छा काम हुआ है सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत सोच के इस बात को रखा है क्योंकि भारत में ये क्षमता है, भारत और देशों को इसमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के साथ। तो मेरे ख्याल से इसमें सफलता मिलेगी और ये फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान पर आएगा।
0: मुकुल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन का एक बजा जाता है, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। नई दिल्ली में भारत के सदारत में मुनक्किद होने वाले ब्रिक्स वज़राए माहौलियात का 12वां इजलास जारी है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر لیا ہے۔

अमरीका ईरानी फौज के साथ पसपरदा बातचीत कर रहा है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के लक्ष्य सैन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलोमन से होगा। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंटपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास जारी है। माहौलियात जंगलात और आबह की तब्दीली की वजारत ने कहा है कि इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल, इत्तेफाक राय के फरोग देने

अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए एक मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीकाकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक जरूरतों पर सख्ती बरतने की वकालत की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने भारत के चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमरीका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनक़िद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसरे के जरिए अपने उस मतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर सेव इलिजिबिलिटी अमरीकी एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवजा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त जरूरतें मुतारिफ कराने की तजवीज है। इसके तहत राइल दहकान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करता तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहकान की यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राजील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है, जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक राय देने का इस्तेमाल किया था। अमरीका के खसूसी एलजी जैरेड हुश्नर ने कहा है कि हम इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के दौरान गाजा में जंगबंदी के मुजवजा मंसूबे पर नुमाया पेशरफ्त हुई। जनाब कुश्नर के मुताबिक इस बातचीत में गाजा की तामीर नो और हमास को गैर मुसल्ला करना और इसराइल की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू और उनकी टीम की तशवीश को इस मुलाकात में दूर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुजवजा मंसूबे से मुतालिक पाए जाने वाली गलत फहमियों और गलत मालूमात को भी वाजे किया गया। जनाब कुश्नर ने यह भी कहा कि अमरीका गाजा की तामीर नो के लिए पुरअज़्म है, लेकिन ये अमल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि गाजा को गैर मुसल्ला न कर दिया जाए। हालिया मुज़ाकरात में फरीकैन ने गाजा को गैर मुसल्ला और बुनियादी सहूलियात से मुतालिक दो वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तेफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सिपाही पासदारान इंकलाब IRGC ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि वाशिंगटन ने ईरानी फौज के साथ बातचीत के लिए पसे पर्दा रबते का चैनल कायम कर रखा है। IRGC के तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी ने मस्कूरा दावे को एक वहम करार देते हुए कहा कि IRGC के अहदेदारों और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही है। जनाब मुहिब्बी ने मजीद कहा कि ईरान का सिफारती निजाम भी इस वक्त वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ नहीं है। उन्होंने इसकी वजह अमरीका की जानिब से किए गए वादों की खिलाफवर्जी करार दिया। जिम्बाब्वे के सदर हेकिंडे हेलिशिमा का दूसरी मरतबा 5 साल मुद्दत के लिए इंतखाब किया गया है। जिम्बाब्वे के इंतखाबी कमीशन ने नतीजे का ऐलान किया है। सदर हेचलिमा को 51% वोट मिले जो सदारती उम्मीदवार की जीत के लिए जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला मिलने पर उधमपुर रियासी और कठुआ जिले में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने रियासी में सिडनी के जंगलाती इलाके और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बैनुल अक्वामी सरहद के नजदीक कई गांवों में भी तलाश की कार्रवाई की। इधर शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल पूंछ जिले में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया। उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, कार्रवाई से मुतालिक तैयारियों और दुश्वार गुजार इलाके में तैनाती के चैलेंजों से वाकिफ कराया गया। उन्होंने अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से गुफ्तगू की और दुश्वार गुजार रास्तों और खराब मौसम के बावजूद उनकी मुस्तैदी और पुख्ता अज़्म को सराहा। तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तहानात से मुतालिक ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनक़िद

श्रोताओं, तुफ्फल में बादशाह अकबर सिर्फ एक रूलर नहीं है, बल्कि एक ऐसे बादशाह हैं जो अपनी सल्तनत को तलवार के अलावा समझ और एक्सेप्टेंस से बड़ा बनाना चाहते हैं, और यहीं से शुरू होती है पर्दे पर ऐतिहासिक कहानी। 16वीं सदी, जब हिंदुस्तान में मुगल सत्ता मजबूत हो रही है और इस एक्सपेंशन के केंद्र में है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिल्म के मुताबिक अकबर की मुलाकात होती है आमेर की राजपूत राजकुमारी जोधा से। दोनों का विवाह होता है, लेकिन ये कोई बॉलीवुड लव मैरिज नहीं, बल्कि ये था एक पॉलिटिकल अलायंस। दो अलग धर्म, अलग संस्कृतियां, अलग परंपराएं, और शुरुआत में प्रेम से ज्यादा दूरी। जोधा अपनी पहचान और विश्वास से समझौता नहीं करना चाहती और अकबर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, और यही बात इस रिश्ते को और खास बनाती चली जाती है।

दोस्तों, ये जो गीत अभी अभी आपने सुना, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि ये उस दौर की शाही भव्यता को एस्टैब्लिश करते एक ड्रीम सीक्वेंस था। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद असलम और बॉनी चक्रवर्ती ने।

उनका यही वो फेज होता है जहां दोनों के बीच औपचारिकताओं के पीछे छिपा हुआ सॉफ्ट कॉर्नर वो मोहब्बत दिखने लगती है, क्योंकि प्यार हमेशा एक जैसे होने से नहीं बल्कि एक दूसरे की अलग अलग दुनिया को समझने से होता है।

और यहाँ पर कहानी में मैं पहले आपको बताऊंगी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट। श्रोताओं, फिल्म को देखकर ऐसा लग सकता है कि जोधा बाई उस समय ये नाम ऑफिशियली इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि इतिहासकारों के बीच में इस बात को लेकर राय एक सी नहीं है, उनके मत अलग अलग है। और इसी लिए मेरे हिसाब से जोधा अकबर को हिस्टोरिकल फिक्शन की तरह देखना ज्यादा सही है, यानी इतिहास की पृष्ठभूमि पर बनी एक सिनेमाई प्रेम कथा। और शायद यही वजह है कि फिल्म इतिहास से ज्यादा एक खूबसूरत कल्पना की तरह दिल में उतरती है। जहां एक तरफ अकबर जोधा की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, वहीं जोधा भी अकबर को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में समझने लगता है।

लिरिसिस्ट काशिफ के बोल और एआर रहमान की आवाज दोस्तों इस गाने की खासियत ही यही रही कि फिल्म की पूरी भव्यता के बीच में ये एकदम अलग तरह की आध्यात्मिक शांति लेकर आया।

लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह अब यहाँ भी सब कुछ आसान तो नहीं रहता। दरबार की राजनीति है, सल्तनत के भीतर सत्ता की महत्वाकांक्षाएं हैं। अकबर के फैसलों से हर कोई खुश नहीं है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बादशाह अपने व्यक्तिगत रिश्तों और सल्तनत के बीच संतुलन बना पाएगा। जोधा भी सिर्फ महल की एक खूबसूरत सी रानी बनकर रहती नहीं, उनका भी अपना आत्मसम्मान है, अपनी सोच है। और अकबर के साथ उनका रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे को बदलने की बजाय समझना शुरू कर देते हैं। श्रोताओ, ऋतिक और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को लेकर उस दौर में खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ रोमांस नहीं, सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक लव स्टोरी को कल्पनाओं के परे उतारने की कोशिश की गई है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ही यही है कि पहले सम्मान, फिर समझ और फिर प्रेम।

और दोस्तों फिल्म की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही। जोधा अकबर को 56 नेशनल अवार्ड्स में 2 अवार्ड्स मिले, बेस्ट कोरियोग्राफी अजीमो शान शहनशाह के लिए और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन नीता लुल्ला के लिए। फिल्म फेयर में भी इसे कई नॉमिनेशंस मिले और फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर सहित 5 अवार्ड्स जीते। यानी कहानी, अभिनय, संगीत, कॉस्ट्यूम और स्केल, हर तरफ से फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों ये थी जोधा अकबर की कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने हमें 16वीं सदी के हिंदुस्तान की एक खूबसूरत सिनेमैटिक दुनिया दिखाई। एक बादशाह, एक राजपूत राजकुमारी, एक राजनीतिक विवाह और फिर धीरे धीरे जन्म लेता एक रिश्ता। लेकिन इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि ये हमें सिर्फ प्यार नहीं सिखाती, ये बताती है कि किसी रिश्ते में प्रेम से पहले सम्मान का होना कितना जरूरी है। और शायद इसी वजह से इतने साल बाद भी जब जश्ने बहारा बजता है या जब मन मोहना सुनाई देता है तो जोधा अकबर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, लगता है जैसे किसी पुराने महल की खिड़की खुली और इतिहास की एक दास्तान हवा के साथ हमारे पास चली आई।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर

0: थपले के मामले में तलाशी की कार्रवाई की है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक सियासत के खातिर FCRA बिल पर गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग महकमे ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपी चंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास जारी है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि यह इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास के सदारत माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। यह इजलास भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत के वसी तर मौजू इस्तेकाम, इख्तरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिब किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि वो माहौलियात के वर्किंग ग्रुप के लिए मुस्बत नतीजों की खातिर एक मानसेज बातचीत और तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरउम्मीद हैं। पांचवीं सेमिकॉन इंडिया 2026 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में अगले महीने की 17 तारीख से होगी। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज्यादा मुल्कों के 500 से ज्यादा नुमाइशकार और तकरीबन 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस साल की सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का मौजू होगा सिलिकॉन से निजाम तक इकोसिस्टम की तामीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी सरकर्दा मुल्कों के आलमी CEOs के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। इन मुल्कों में अमरीका, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नेदरलैंड्स और मलेशिया शामिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC के मुबैना पेपर लीक घपले के मामले में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। KPSC के साबिक चेयरमैन शिव शंकर अप्पा एस साहूकार को इम्तहान का पर्चा लीक होने के मामले में मुलजिम बताया गया है। उन पर OMR शीट्स में हेराफेरी करने और सरकारी वेटनरी अफसरों की भर्ती के लिए एक एक उम्मीदवार से 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने का इल्जाम है। यह इल्जाम भी लगाया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी ने बिचौलिए का काम किया था। इस तनाजुर में ईडी ने शिवशंकर अप्पा और KPSC के कुछ साबिक अरकान की रिहायशगाहों और प्राइवेट कंपनी से वाबस्ता दफातर में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो वोट बैंक से या सियासत की खातिर गैर मुल्की एहतियात को मुंजरित करने से मुतालिक तरमीमी बिल के ताल्लुक से गलत जानकारी फैलाने में लगी हुई हैं। एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मजकूरा बिल से गैर मुल्की एहतियात की आमद में शफाफियत लाई जा सकेगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। जनाब रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी बातें फैलाकर सियासत करना बिल्कुल नामुनासिब बात है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी का टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: बीजेपी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स में यौम आजादी की तकरीबात के दौरान कौमी गीत वंदे मातरम की तोहिन किए जाने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कौमी गीत का एहतराम भी नहीं कर सकती तो

0: बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कौमी गीत का एहतराम भी नहीं कर सकती तो उसे तहरीक आजादी पर अपनी इजारादारी का दावा करने का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। एक बयान में एम्स ने कहा है कि अमराज कल्ब के महकमे में जनाब नड्डा की निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वजारत दिफा ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम 405 अशिया पर मुश्तमिल पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट PIL को नोटिफाई कर दिया है। इन अशिया की तखमीना तजारती कदर 3,070 करोड़ रुपए है। इनमें 16 अशिया भारतीय कोस्ट गार्ड और 389 अशिया सरकारी दिफाई शोबे की कंपनियों की हैं। इस फहरिस्त में लाइन डिप्लेसेबल यूनिट, सब सिस्टम, सब असम्बलीज, कलपुर्जे और कच्चा माल शामिल हैं। वजारत ने बताया है कि ये छठी PIL आत्मनिर्भर भारत इकदाम के तहत दिफाई साजो सामान तैयार करने में खुद मुख्तारी को फरोग देने की सरकार की कोशिशों की जानिब एक और कदम है। केरलम में विजयनगरम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो गई। यह कदम खत्ते की समुद्री तिजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। केरलम के वजीर आला VD सतीशन ने इन खिदमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने यूरोप के लिए 2 कंटेनरों को रवाना किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के गहरे दबाव का हल्का बनने से झारखंड और पड़ोस की रियासतों में मौसम में तब्दीली आई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू और रियासत के कई दीगर हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने से मुतालिक महकमे ने लोगों को सलाह दी है कि वो महफूज मकामात पर रहें, क्योंकि 40 से लेकर 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के गहरे दबाव का हल्का झारखंड के करीब पहुंच गया है और अब ये रांची के कोई 100 किलोमीटर शुमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेर असर रियासत के शुमाल वस्ती और शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसमियात महकमे ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिले में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक हवा के दबाव का ये हल्का अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के रुख करते हुए मगरब शुमाल मगरब में बढ़ने का इम्कान है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी अगले 2 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। सरकार ने 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का ऐलान कर दिया है। मुमताज कारकर्दगी के लिए त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद की खवातीन की सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन जोड़ी के साथ साथ 15 दीगर खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पेश किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच प्रवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य अवार्ड पेश किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की उन्नति हुडा खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। उन्होंने

कलेक्ट्रेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक कपले के मामले में तलाशी की कार्रवाई की है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक सियासत के खातिर FCRA बिल पर गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग महकमे ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी त्रिशा धोनी और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों के

की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, त्रिशा जॉली और पुले

0: 22 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि एफटीआर जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर

0: परांग लादर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तीन दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विजयनगरम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुँचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच

0: गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक मोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सलाम, नमस्ते, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के कार्यक्रम एक ही कलाकार में। मैं हूँ आपकी मित्वा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। और आज करूंगी कुछ आपसे बातें दिल की। दोस्तों, कुछ लोग ना तस्वीरें बनाते हैं रंगों से, कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं कैमरे से, और कुछ तो सिर्फ शब्दों से तस्वीर बना देते हैं। ऐसी तस्वीर जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। बारिश की एक बूंद, खिड़की के पास बैठा कोई इंसान, पुरानी किताब में दबा हुआ कोई खत और किसी की याद, इन सब को अगर कोई आवाज दे सकता है तो वो है हमारे आपके गुलजार साहब। अब आप इन्हें गीतकार कहें या डायलॉग राइटर, आप इन्हें कहानीकार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फिल्म डायरेक्टर, संपूर्ण सिंह कालरा, यानी कि आपके हमारे गुलजार साहब आज मना रहे हैं अपना हैप्पी बर्थडे। यानी 18 अगस्त 1934 को जन्म हुआ था उनका। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना मकाम सिर्फ बनाया नहीं बल्कि दिलों पर छा गए हैं। तो आज का ये आधा घंटा उनके नाम, उनके शब्दों के नाम, उनके गीतों के नाम, जिन्हें सुनकर लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल वही बात है जो कहनी तो मुझे थी लेकिन कह नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं गुलजार साहब के साथ ये सफर।

तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूं मशहूर है कि गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इन्होंने कई लेखकों को पढ़ा और इसी बीच इनकी दोस्ती और भी लेखक और कलाकारों से हुई। मुंबई में रहने के दौरान आजीविका के लिए इन्होंने एक गैराज में काम करना शुरू कर दिया और ऐसे में एक दोस्त इन्हें लेकर गए बिमल रॉय साहब के पास, जहां काम चल रहा था फिल्म बंदिनी के लिए। अब काम तो चल रहा था बंदिनी के लिए, लेकिन फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन साहब और गीतकार शैलेंद्र साहब एक सोच में एक पेस में आ ही नहीं पा रहे थे और इसीलिए फिल्म मेकर बिमल रॉय साहब हुए बड़े परेशान। अब करें तो करें क्या, और ऐसे में गुलजार साहब को मिली अपनी पहले गाने को लिखने की अपॉर्चुनिटी। सुनाओ कौन सा गाना था वो।

अच्छा हुआ क्या कि शैलेंद्र साहब और एसडी बर्मन साहब में फिर से दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती होते ही गुलजार साहब को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि ये गाना फिल्म में वैसे ही रखा गया। अब गुलजार साहब तो वापस चले गए गैराज काम करने के लिए, लेकिन बिमल रॉय साहब ने गुलजार साहब को अपने असिस्टेंट के तौर पर अपने साथ रहने की पेशकश की। अब देखिए, हुनर तो उनमें था ही, और वो ये अपने पहले ही गीत से प्रूव भी कर चुके थे। बिमल रॉय के संग काम करते हुए गुलजार साहब की दोस्ती पंचम दा से हुई, और इसी बीच उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी दा का सानिध्य भी मिला। ऋषि दा उस दौर में बतौर एडिटर काम किया करते थे, और फिर बाद में वे डायरेक्टर बने।

तो आरडी बर्मन साहब के साथ अच्छी दोस्ती के चलते जब वे फिल्म डायरेक्टर बने तो लगभग सभी फिल्मों के संगीत आरडी बर्मन साहब से ही उन्होंने दिलवाए। अब चाहे इसमें परिचय हो, आंधी हो, किनारा हो, लेकिन बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर थे सलिल चौधरी साहब और फिल्म मौसम में मदन मोहन साहब। संजीव कुमार साहब के संग गुलजार साहब की दोस्ती खूब रही। इस जोड़ी ने हर फिल्म में कमाल किया, चाहे वो मियां बीवी के रिश्ते पर बनी फिल्म आंधी हो, या फिर हस्ती गुदगुदाती फिल्म अंगूर हो, या फिर मूक पति पत्नी की कहानी कोशिश।

दोस्तों, गुलजार साहब एक ऐसे फनकार रहे जिन्होंने हर पीढ़ी से नाता जोड़ा। अब चाहे वो मोगली वाला वो गाना हो, याद है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, या फिर अजीम शायर मिर्जा गालिब के ऊपर बनाया हुआ टीवी सीरियल, जॉनरा चाहे जो भी हो, गुलजार साहब आम इंसान से नाता जोड़ने में हमेशा ही आगे रहे। बतौर गीतकार गुलजार साहब ने बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो एसडी बर्मन साहब हों, सलील चौधरी, आरडी बर्मन या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। और फिर उन्होंने काम किया बदलते दौर के म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान, विशाल भारद्वाज और शंकर एहसान लॉय के संग। वो खुद अपने इंटरव्यूज में विशाल भारद्वाज के संग अपने काम को बहुत सराहते रहते हैं। उनका कहना है कि विशाल ने मेरे गानों को जवान रहने में बड़ी मदद की है।

ने मजकूरा दावे को एक वहम करार देते हुए कहा कि आईआरजीसी के अहदेदारों और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही है। जनाब मोहिब्बी ने मजीद कहा कि ईरान का सिफारती निजाम भी इस वक्त वाशिंगटन के साथ मुजाकरात में मसरूफ नहीं है। जाम्बिया के सदर हकाइंदे हिचिलेमा का दूसरी मरतबा 5 साल मुद्दत के लिए इंतखाब किया गया है। जाम्बिया के इंतखाबी कमीशन ने नतीजों का

के और साथियों को आपने सुना गैंगस्टर फिल्म में। प्रोग्राम की अगली पेशकश हर्षित सक्सेना को सुनिए, फिल्म है मर्डर 2।

जन्नत फिल्म का नगमा अभी आपने सुना केके का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव्स 1071।

के अंधेरों की खाक क्या छानी दा है जिसे उम्र कहे हम दुनिया।

0: और साहिल की तलब और है दरिया की तलब और बेकार तमन्नाओं के पर बांध रहे हो, बेकार तमन्नाओं के पर बांध रहे हो, अच्छे की तलब और है उनका की तलब और, अच्छे की तलब और है उनका की तलब और, साहिल की तलब और है सहरा की तलब और, अदना की तलब और है आला की तलब और।
1: कुरान का मतलब समाप्त करना।
0: ढूंढ लेता है वो कमी मुझ में।

0: मुझ में ढूंढ लेता है वो कमी मुझे
1: जानिब। और वो सिंफ है अफसाना निगारी। अफसाने में जिंदगी के किसी पहलू, किसी खास वाक़े का जिक्र और जिंदगी के तजर्बात खास की आमिजिश होती है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं जनाब गजनफर अली का तहरीर करदा अफसाना बाउनवान चारा।
2: पापा कोई कहानी सुनाइए ना, मेरे दोनों बच्चे करीब आकर बैठ गए। कैसी कहानी? ऐसी कहानी जिसमें खूब सारे जानवर हों, शेर हो, भेड़िया हो, चीते हो और थ्रिल हो। ठीक है, आज मैं ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर थे, उनमें भेड़ें भी थीं। भेड़ों के रेवड़ जंगल में चारों तरफ जगह जगह बिखरे पड़े थे। भेड़ों को जंगल के कुछ जानवर पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ अपने दिल में मैल रखते थे, उनसे नफरत करते थे। पसंद न करने की कई वजहें थीं।

और काफी शर्मिंदा भी। उन सब ने अपनी हार का जिम्मेदार भेड़ों को ठहराया। बाघ और भेड़िया तुम्हारे गुस्से के भेड़ों की रेवड़ पर जगह जगह टूट पड़े। जख्मी भेड़ें बदहवास होकर गिरती पड़ती, लंगड़ाती, रोती पीटती शेर के पास पहुंची। शेर ने उनका रोना धोना सुनकर दहाड़ते हुए ललकारा, खबरदार, अब अगर किसी ने इन पर हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। मगर शेर की दहाड़ और धमकी के बावजूद हमले नहीं रुके। कुछ दिनों बाद तेंदुआ और

भेड़ें जुगाली करने लगी, जैसे उनके सूखे मेदों से बहुत सारी हरी मुलायम पत्तियां निकलकर उनके मुंह में आ गई हो। उनके सर हिलने लगे, दुएं भी हिलने लगी और उनके पांव भी आगे पीछे होने लगे। गिरगिटों के जरिए शेर तक जब ये खबर पहुंची तो घबरा कर फौरन उसने अपनी सलाहकार लोमड़ी को तलब किया। लोमड़ी ने अपनी आंखें नचा नचा कर खबर की गंभीरता से शेर को आगाह किया। शेर ने बिना देर किए अपने पालतू दरिंदे

किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये नगमा भी आपने हम किसी से कम नहीं फिल्म से सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा काली चरण फिल्म से हमने आपको सुनवाया। इससे पहले आपने सुना मोहम्मद रफी के साथ नंदा को फिल्म थी जब जब फूल खिले। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म है ड्रीम गर्ल।

की आवाज में ये नगमा था प्रतिज्ञा फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश रुक तेरा मस्ताना फिल्म का नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: किशोर कुमार के साथ थी लता मंगेशकर, फिल्म थी आन मिलो सजना। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। भारत की सदारत में बीस मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की बारहवीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडप में मुनक़िद की गई। केरल में विजिंजाम बंदरगाह से बराह रास्त दरामदाद और बरामदाद आज से शुरू हो गई। यह कदम खित्ते में समुद्री तिजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान किया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी टेरेसा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलमन से होगा। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडप में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास ने अहम उमूर पर तफ्तीशी तबादला ख्याल किया। इत्तेफाक राय को फरोग देना, माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद बनाने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया। ब्रिक्स उजराए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव ने की। यह इजलास भारत के 2026 की ब्रिक्स सदारत के वसी तर मौजू इस्तेकाम इख्तरा तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनक़िद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब यादव ने इंसानियत पहले नजरिया पर अमल करते हुए एक पायदार कुर्रायज बनाने की जानिब अवामी शिरकत और टेक्नोलॉजी पॉलिसी में तालमेल बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के दरमियान आलूदगी के अखराज में 37% से ज्यादा कमी की है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि भारत की कुल बिजली की सलाहियत का आधे से ज्यादा हिस्सा अब साफ जराये से आता है। केरल में विजिंजाम सी पोर्ट से रास दरामदाद और बरामदाद आज से शुरू हो गई है। यह कदम खिज्जे की समुद्री तजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। केरल के वजीर आला VD सतसान ने इन खदशात का खिदमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने यूरोप के लिए 2 कंटेनरों को रवाना किया। पिछले साल 2 मई को इस बंदरगाह के कौम के नाम वक्फ किए जाने के बाद बराह रास्त बरामद और दरामद की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इन बराह रास्त खदमात के साथ यूरोप में जाने वाले जहाजों के वक्त में खातिरख्वाह कमी आएगी। विजिंजाम से चलने वाले जहाज जो पहले 2 महीनों में पहुंचते थे वो अब 28 दिन में यूरोप पहुंच जाएंगे। बंदरगाह के हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की कि इस बंदरगाह से फिलहाल कुछ वक्त के लिए फुल कंटेनर लोड्स FCL के लिए ही खिदमत दी जाएंगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी कि जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाए ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मकामी मीडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अरदासों की समाप्त करते 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म सादिर किया। अदालत ने कहा कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत यह हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके में बढ़ती बदअमनी के तनाजुर में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने खित्ते में पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों इंसानी हकूक की पामालियों की जानब बैन

है कि देवतावा ने इस पुंडेक के स्वर्ग तू फुल भी बरसाए हन। श्री कृष्ण को सनातन धर्म दे मनन आले लोग अपने इष्ट दी तरह पुजेंदे हन। ही कारण उना दिया जिंदगियां दिया लीलावां को याद करके पुरब दी तरह मनेंदे हन। खाली पूरे भारत इच नहीं बंगलादेश पाकिस्तान नेपाल अमेरिका इंडोनेशिया जिच भी हिंदू समाज रहा है उत ए पुरब मनाया वेंदा है। इस कान आले ता उना दे मंदर इच कई तरीका नाल इस पुरब को पूरे विश्व विच मनेंदे हिन। इस पुरब को मनावण आले हर जाई ते मंदरा को सजाया वेंदा है। कितई कितई ता अठ अठ दीवार दा रास दा कार्यक्रम भी रखा वेंदा है। मंदरा विच कृष्ण दी लीलावां थींदियां हिन।

0: karya. Tebai, tebai.
1: Kemana? Kemana telah? Iraha ni. Anjingan lokang bagai. Anjingan di lokang wangi, tera lahu ni sufed ho chukya. Anjingan lo, anjingan dira lale. Hai? Hai? Ini ganta be? Gandhi di? Gani asoj ayu hi hai. आज मैं तेरे कंधे ऊपर बैठ के गावांगा, तेरे कंधे मेरे दिल दा लहू पीन के, तब तेरे इस फूल का रंग लाल हो जाएगा। तुम लाल फूल ही लगेंगे, तुम जीवन दे सुहागपुर का प्रतीक होनेगा, है है? ताकि तू मेरे लिए सोने ते लटकेगा?
0: हाँ। दिसंबर दे इना बर्फीले दिनाच कोई ना कोई सूरमा मनुख जन्म लेगा जरा सब खातर सोने लटकेगा
1: है सब खातर सोने लटकना जरूरी है
0: हाँ बिल्कुल
1: पर जो हक सच नहीं होए ता पर मैनू तेरी कोई भी गल समझ नहीं आई
0: जाएगा बस
1: तू अपने कंधे ऊपर बैठ लें दे मैं तेरे को रोक सकता ये तो मेरे लिए खुशकिस्मत वाली गल है और पंछी जब मेरे वल मुंह भी नहीं करते तो इतनी बैठना चाहता है तो खुशी नाल बैठ जा पर मेरे को तेरे लिए कंधे के अलावा और कुछ नहीं पड़ा
0: मायूस ना हो तेरे को एक फूल भी तो है ना
1: हाँ पर मैं उसने मौसम दिया बेरहमिया तो मसीह बचाया है वो मेरी खुशी नहीं रही जाए पर वो कोई रंग नहीं रहा
0: कोई गल नहीं कोई गल नहीं तो बस मुझे बैठा दे दोनों गाँव दे
2: समय ना सुनहरी पंछी गुलाब के बूटे ऊपर कंडिया बैठ गया ते गौन लग पिया

करते प्यासी, और शरीर खंडेरा लगे जख्म करके छटपटा रहा सी। उस वेले भी उस सोच रहा सी, इस सारा कुट में बर्फीले मौसम च गुलाब दाए फुल जिंदगी की सुंदरता का चिन्ह धीरे महक महक कदे नहीं मरनी नहीं चाहिए, नहीं मरनी चाहिए। समय दे पंछी की यह हालत वेख के लाल सोहे हो चुके गुलाब के हंसू हंसू करते फुल ने घबरा के कहा, समय के सुनहरे पंछी ने उन्हें धीरज दिंदा क्या, तू चिंता ना कर, पर क्यों सुखाम जीवन दी वो साली नहीं सुनी।

रामनाथ, सुखमनजीत ते सहज। इन्होंने बड़ा सोहना मैसेज भी लिखा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पानी बचाओ, रुख लगाओ, प्रकृति की संभाल करो, नशा मुक्त पंजाब बनाओ। किन्ना सोहना सुने है। तो लो फिर गुरदास मान की आवाज दे विच एक गीत सानू सुनाउने आं।

0: भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि एफसीआरए जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व सीबीआई निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी प्रगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोवा में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब आइए सुनते हैं किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका काम।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश देखिए मौसम कितना खूबसूरत है और ये सावन का महीना है और ये महीना हमें भगवान शिव की आराधना के साथ साथ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश भी देता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, हमारे सभी तीज त्योहार प्रकृति के साथ जुड़ने का संदेश देते हैं क्योंकि सही मायनों में हमें जो ऊर्जा मिलती है वो प्रकृति से ही मिलती है।
3: और देखिए इसीलिए हम आज के कार्यक्रम में हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीकें पर और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर हमारी चर्चा होगी और साथ ही आजादपुर मंडी के सब्जियों और फलों के ताज़ा भाव और कृषि सलाह भी देंगे।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा।
3: रजनीश हमारी सरकारें हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं। उन्हीं योजनाओं में से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना किसान भाइयों और बहनों को एक ऐसा उद्देश्य लेकर आती है जिसमें खेती को अधिक टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और लाभकारी बनाना है। इसके तहत जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, सूक्ष्म सिंचाई और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि फसल के साथ पशुपालन और बागवानी को जोड़ना, साथ ही साथ वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास करना और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी बात करना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जरिए सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना भी इस सतत कृषि मिशन का उद्देश्य है।
3: और इसीलिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं ना, समय समय पर हमें जानकारी देते हैं कि आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाएं और साथ ही कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि, यही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है।
4: और प्रतिमा देखिए, हम सबको राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य है उसका पालन करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसका पालन करेंगे तभी हम इन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी, कहते हैं कि एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे।
3: और हम तो सभी किसान भाई बहनों से ये भी कहते हैं कि देखिए वर्षा हो रही है इस समय और जहां जहां वर्षा हो रही है वहां जल संरक्षण जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का विषय है, हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीकें। आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ पूर्व अध्यक्ष शाखीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
5: डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
6: धन्यवाद।
5: तो डॉक्टर साहब जैसा विषय है हरी प्याज का, तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो हरी प्याज की खेती करते आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे नए श्रोता होते हैं जिनकी उत्सुक होते हैं कि आखिर कैसे किया जाए, हरी प्याज क्या इसकी विशेषताएं हैं और ये हरी प्याज को कहीं भी उगा सकते हैं या इसके लिए जो खेत है वो विशेष होना चाहिए।
6: देखिए हरी प्याज सब्जियों में महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है और शकरकंद के लिए प्याज उत्पादन करते हैं उससे इसकी खेती थोड़ी भिन्न है क्योंकि जो शकरकंद के लिए उत्पादन करते हैं उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य होता है शकरकंद को अधिक उपज प्राप्त करना। लेकिन जब हम हरी प्याज की खेती करते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे खेतों में उसकी रोपाई करें जिससे कि उस पर वानस्पतिक बढ़वार तेजी से हो और अधिक हो और ये उन किस्मों का चयन करते हैं जो सफेद रंग की हो और साथ साथ उनका तना मोटा हो और तेजी से वृद्धि करने वाली हो। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हरी प्याज की खेती की जिसको हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए और अगर वो इसको ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको हरी प्याज की जो खेती है उसको करने में उनको लाभ भी होता है और उनको उत्पादन भी अच्छा मिलता है।
5: बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जब बात आती है कि हम किस प्रकार से उनकी किस्मों को चुने, उत्पादन कितना होगा, तो ध्यान जाता है उन्नत किस्मों की ओर जिनमें आज वैज्ञानिक अनुसंधान करके नई नई किस्में इजाद कर रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन में कोशिश होती है कि हमारी फसलें कम से कम प्रभावित हों और उत्पादन अच्छा मिले, लागत कम हो, तो उसके लिए कौन सी उन्नत किस्में किसान भाइयों को चुननी चाहिए?
6: देखिए हरी प्याज की खेती के लिए सफेद रंग की

0: प्याज हैं, बल्ब देने वाली किस्में हैं, उनका चयन करना है। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि दो किस्में तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के शाखी विज्ञान ने विकसित किए हैं, पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट राउंड। और दो किस्में हमारे क्षेत्रीय केंद्र कटराई में है, जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, वहां से विकसित हुई है, अर्ली ग्रेनो और ब्राउन स्पेनिश। इसके अलावा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की एक किस्म है पंजाब सफेद, और पुणे के अंदर एक संस्थान है राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान, DOGR बोलते हैं, उनकी भी बीमा सफेद के नाम से किस्म है, जिनको हमारे किसान भाई हरी प्याज की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में निश्चित रूप से ये एक शंका आई होगी या विचार आया होगा कि सफेद किस्मों को ही क्यों हम हरी प्याज के लिए इस्तेमाल में लाएं। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो सफेद रंग की किस्में हैं उनका जो तना जब तैयार होता है वो सफेद रंग का ही रहता है, और जो लाल रंग की प्याज होती है तो उनका तना लाल रंग का होता है, और उसमें किसान को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, उनके लाल रंग के छिलकों को छीलना पड़ता है ताकि वो आकर्षक बन जाए। तो ऐसे में पहले ही हमको इस बात की सावधानी रखनी है कि हम सफेद शकरकंद उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करें, और ब्राउन स्पेनिश या ये जो अर्ली ग्रेनो है, एक किस्म और है हमने पूसा संस्थान में विकसित की थी, पूसा शोभा है और पूसा रिद्धि, वो लाल रंग की है लेकिन उसको हम हरी प्याज के लिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसका तना भी मजबूत होता है और बाहर किसान को अच्छा मिलता है। तो ये किस्मों का चयन किसान भाई कर सकते हैं सफेद रंग की, उससे हमको बाजार में अच्छा मूल्य मिलने की संभावना है।
1: डॉक्टर साहब, जो आज हमारे किसान भाई बहन कार्यक्रम सुन रहे होंगे और मन में जिज्ञासा होगी, जो ये समय चल रहा है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैंने किस्में चुनूं और मैंने लगाना चाहूं, तो उन्हें पौध लगाने चाहिए क्या तरीका रहेगा, या पौध लगाने का समय निकल चुका है तो क्या?
0: निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत व्यावहारिक है। प्याज दो प्रकार से उत्पादित होती है, एक तो होती है बीज की पौधशाला में बिजाई करें और पौध तैयार करें, उसमें लगभग बारिश के मौसम में 35 से 38 दिन का समय लगता है, उसके बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी जो प्रचलित पद्धति है वो है कि गंठियों से भी हम हरी प्याज का उत्पादन ले सकते हैं, और मैं किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप जल्दी और अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आप गंठियों का इस्तेमाल करें, और गंठियों में भी सफेद किस्म की गंठियों का इस्तेमाल करें, लाल रंग की गंठियों का इस्तेमाल ना करें। और गंठियों को किसान भाई सीधे उनकी बिजाई कर सकते हैं, उसमें पौध तैयार करने की जरूरत है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो सुसुप्तावस्था में नहीं होनी चाहिए। कई बार जो किसान है वो देर से खुदाई करते हैं तो उसमें सुसुप्तावस्था रहती है और डोरमेंसी की वजह से उनमें जमाव नहीं हो पाता, और या बहुत धीमी गति से होता है, ऐसे में फसल की अवधि बढ़ जाती है। फसल अवधि बढ़ने से किसान का लागत बढ़ती है क्योंकि उसको पानी देना, निराई गुड़ाई करना, और उसका जो लक्ष्य है कि मुझे जल्दी 45 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर हरी प्याज बाजार में लेनी है, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है अगर किसान भाई अभी बिजाई करते हैं तो अक्टूबर के मध्य तक ये बहुत अच्छे भाव मिलने की संभावना रहती है। तो ये लक्ष्य रख के चलना है कि हमें घंटियों से ही बिजाई करनी है और अभी तुरंत बिजाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके द्वारा बताए गए लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए जब हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि हम घंटियों से बिजाई करें, तो बीज कहाँ से प्राप्त करें और किस मात्रा में बीज का प्रयोग हमें करना चाहिए?
0: देखिए, अगर गंठियों से इस्तेमाल करते हैं तो गंठियों का एक हेक्टेयर में 4 से 5 क्विंटल गंठियां लगती हैं सामान्य खरीफ प्याज के लिए
1: जी।
0: लेकिन यहाँ पे अगर हमारे किसान भाई 6 क्विंटल भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हेक्टेयर में अगर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 6 क्विंटल गंठियों का इस्तेमाल करें, और गंठियां मध्यम आकार की होनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। या अगर आपको बाजार में गंठियां मिलती हैं और वो ग्रेडिंग नहीं की हुई है तो आप उसको छलनी लगा करके छोटी गंठियों को निकाल सकते हैं और बड़ी गंठियों को और मध्यम आकार की गंठियों को रोपाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और गंठियां जो है आजादपुर मंडी में भी बहुत सारे बेचते हैं, नहीं तो हमारा जो अलवर भरतपुर का एरिया है यहाँ पे किसान व्यवसायिक रूप से गंठियों का उत्पादन करते हैं। बहुत सारे किसान गुजरात से भी गंठियां लेके आते हैं, महाराष्ट्र से भी लेके आते हैं, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में गुजरात के किसान इसको एक उद्योग व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और गंठियां प्याज करते हैं, क्योंकि वो खरीफ उत्पादन के लिए प्याज अधिकतर हमारे देश में जो लगती है वो सारी गंठियों से ही लगती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है हरी प्याज का उत्पादन, तो कई बार हमारे किसान भाई बहन सोचते हैं कि आज सामान्य प्याज से बात हटकर हो रही है, तो हरी प्याज का उत्पादन किस प्रकार से लाभकारी किसानों को सिद्ध होता है?
0: देखिए, कुछ लोग तो 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास रोपाई कर देते हैं
1: जी,
0: और कुछ लोग अलग अलग समय पर करते हैं। उसका कारण ये होता है कि अगर सारी प्याज की रोपाई एक साथ कर देते तो बाजार में तैयार होकर के एक साथ आएगी
1: जी।
0: इससे बाजार में जब माल ज्यादा जाएगा तो उसके भाव कम मिलने की उम्मीद हो जाती है। तो एक तो ये है कि हमारे किसान भाई बाजार की मांग को समझते हुए उसको स्प्लिट प्लांटिंग करते हैं या स्टेगर्ड प्लांटिंग करते हैं अलग अलग समय।

0: ताकि लंबे समय तक वो बाजार में हरी प्याज का उत्पादन निरंतर रूप से दे सकें। दूसरा ये है कि हरी प्याज में कीड़ों की संभावना इस समय कम होती है, क्योंकि बारिश का मौसम नमी रहता है और जहां पे हरी प्याज की किसान भाई खेती करते हैं वो लगभग सिंचित क्षेत्र होते हैं, तो उसमें थ्रिप्स आने की भी संभावना बिल्कुल कम होती है, तो कीड़ों से तो लगभग बचाव होता ही है। लेकिन साथ ही साथ तो इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि बीमारियों की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि बारिश है, ह्यूमिडिटी है, अधिक तापक्रम है, तो तापक्रम और नमी दोनों का जो समावेश है वो मिलकर के बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो इसलिए किसान भाइयों को पहले ही इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि उनकी फसल में बीमारियां ना आए, तो उसके लिए जो प्रिवेंटिव बचाव के रूप में जो उपाय हैं उनको अपनाने की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन हमने बात करी थी कि हम सीधे बिजाई कर सकते हैं, गंठिया खेत में लगाएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा और आवश्यकता अनुसार, लेकिन कई हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं कि जिन्होंने अपनी नर्सरी पहले से तैयार कर रखी और उनका विचार है कि रोपाई की जाए, तो उसके लिए क्या उचित समय है और रोपाई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: निश्चित रूप से जो सजग किसान हैं या इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वो पहले से योजना बना लेते हैं और जून के अंत में या जुलाई के पहले सप्ताह में पौध डाल देते हैं
1: जी,
0: और वो पौध रोपाई के लिए तैयार है। पौध की रोपाई से जो तैयार करके हम रोपाई करते हैं उसमें भी किसान को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। एक तो उसमें पौध तैयार करने में जो समय लगता है उसको लगाना पड़ता है और उसमें जो लागत बढ़ती है गंठियों की तुलना में। दूसरा, जिनको लगाई हुई है तो उनको ये ध्यान रखना है कि पौध को निकालने से पहले उसमें एक फफूंदनाशी का छिड़काव किया जा सकता है
1: जी,
0: ताकि कम मात्रा दवाई की लगेगी और कम प्रयासों में बचाव के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। कई किसान भाई ऐसा भी समझते हैं कि जब बीमारी ने तो मैं क्यों छिड़काव करूं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव बीमारी के इलाज से ज्यादा बेहतर है। तो बीमारी आने के बाद फिर ज्यादा दवाई लगती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खेत में रोपाई होने के बाद आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। तो नर्सरी में पौध को रोपाई करने से पहले ही उसमें फफूंदनाशी का किसी स्टिकर के साथ मिलाकर के छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम साफ होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, हवा की गति तेज नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रख के हमारे किसान भाई फफूंदनाशी का छिड़काव करें, उसके 2-3 दिन बाद उनको निकाल करके खेतों में रोपाई करें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं वर्षा का मौसम है और वर्षा के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया, अचानक से बारिश आती है, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और दूसरा, उसमें जब खाद उर्वरक देना होता है रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद, वो जो है आसानी से दिया जा सकता है। अगर हम मेड़ों के ऊपर रोपाई कर देते हैं और उसके बाद उसमें निराई गुड़ाई तो सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है, लेकिन उसमें उर्वरक देने में बड़ी कठिनाई होती है, इससे वृद्धि विकास करना मुश्किल होता है। इसलिए बारिश के मौसम में हरी प्याज की रोपाई उथली क्यारियों पर करें और कम से कम 4 से 5 रो लगाएं और न्यूनतम क्यारी का रेज बेड का आकार होगा वो 15 सेंटीमीटर उठा हुआ होगा, 60 सेंटीमीटर वो चौड़ी होगी, और पहली जो रोपाई करेंगे वो 5 से 7 सेंटीमीटर पे करेंगे किनारे पे, और फिर 10-10 सेंटीमीटर के अंतराल से 5 रो को लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, हरी प्याज में जब आप रोपाई करते हैं, चाहे गंठियों की बिजाई करते हैं या पौध की रोपाई करते हैं, और उसके गंठियों के इमरजेंस में और इनके दोबारा खड़े होने में, प्लांट स्टैंड बोलते हैं अंग्रेजी में, पौधे रोपाई के बाद एक बार लुढ़कते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं, धान हो, आपने दूसरी फसलें भी देखी होगी, उसके लिए यहाँ बारिश का मौसम है, नमी ज्यादा है, तो खरपतवार एक चुनौती होते हैं, तो खरपतवार ना आए खेत में गंठियों की बिजाई के बाद या पौध की रोपाई के तुरंत बाद, जैसे ही पानी लगा देते हैं उससे अगले दिन या तो लगा करके स्प्रे करके पानी दें या लगाने के 3-4 दिन बाद ये स्प्रे किया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भाई कौन सा खरपतवार नाशी लगाएं, तो अनुभव और संस्कृति के आधार पर हम ये बताना चाहेंगे कि पेंडामेथिलीन 30 EC का 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है और 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी पर्याप्त रहता है। और पेंडामेथिलीन 30 EC का है कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की सिफारिश की गई है कि भाई इतना हमको इस्तेमाल में करना है, और उसके बाद 25 से 30 दिन तक खरपतवारों की मात्रा कम होगी और उसके बाद फिर किसान भाई एक गुड़ाई करके ताकि फसल वृद्धि की रफ्तार पकड़ लेगी और फिर धीरे धीरे खरपतवारों की संख्या को दबाने में सफल होगी।
1: यानी कि जब फसल की वृद्धि की बात आती है तो किसान सोचता है कि लागत कम से कम लगे और उत्पादन अच्छा हो, लेकिन उसमें उर्वरक प्रबंधन पर क्या ध्यान देना होगा?
0: देखिए, प्याज अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करती है, वैसे तो सामान्यतः सारी सब्जियां जो कम अवधि की हैं उनको छोड़ दें या दलहनी फसलों को छोड़ दें तो सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही प्रचुर मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अगर हम हरी प्याज की बात करते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 ही किलोग्राम पोटास, इसके अतिरिक्त 10 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मात्रा मैंने बताई ये तो एक वैज्ञानिक संस्तुति हुई, किसान 120 किलो नत्रजन कैसे देगा, 60 किलोग्राम फास्फोरस कैसे देगा, पोटास कैसे देगा। पोटास को और फास्फोरस को खेत की तैयारी के समय दिया जाता है, नत्रजन की जो आधी मात्रा है वो भी प्रारंभ में दी जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं किसान भाई, आधी मात्रा नत्रजन की ना लेकर के उसमें एक तिहाई मात्रा का इस्तेमाल करें और जो बची हुई दो तिहाई मात्रा है उसको दो बार स्प्लिट डोज में इस्तेमाल करें ताकि पौधे की वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। और जब हम सर्दी के मौसम में हम कहते हैं 50% मात्रा नत्रजन की बुआई के समय डालो, क्योंकि तब बारिश की संभावना कम होती है, लेकिन वर्षा के मौसम में अगर सारी मात्रा एक साथ दे देते हैं और तेज बारिश होती है तो पौधे को उपलब्धता कम होती है और पानी में घुल करके नष्ट हो जाती है या उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि खरीफ की जो प्याज है उसमें नत्रजन की एक तिहाई मात्रा पहले दो और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा उसमें दो। अगर किसान भाई यूरिया से नत्रजन दे रहा है तो इनको 4 से 5 बैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बैग का आकार भी घट गया, पहले 50 किलो का था 45 किलो का हो गया, फास्फोरस पोटास में 50 किलो का ही है। अगर हमें 60 किलो देना है तो उसमें लगभग 1.5 से 3 बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक हेक्टेयर में, और यहाँ पे 2 बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा पोटास देने के लिए। और कई किसान भाई पोटास देने से संकोच करते हैं, किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ ऐसे तो हम सिफारिश करते हैं कि कोई भी फसल उगाने से पहले वर्ष में एक बार अपने खेत की मृदा में कितने उर्वरकों की मात्रा उसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन अधिकतर किसान ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो मृदाएं हैं उनमें नत्रजन की, फास्फोरस और पोटास की कमी है। पहले माना जाता था पोटास की कमी, लेकिन अभी धीरे धीरे पोटास की कमी भी बढ़ रही है। जब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान एक फसल के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और सब्जियों में तो कई बार किसान 4 से 5 फसल तक ले लेते हैं और लगभग एक ही नेचर की फसल होती तो वो पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हुए जमीन में उसकी मात्रा कम हो जाती है। पोटास इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं मैं क्योंकि ये एक तो पौधे में चमक लाता है, दूसरा ये बीमारियों से बचने के लिए पौधे को क्षमता का विकास करता है, इसलिए पोटास की मात्रा का इस्तेमाल करना खरीफ के मौसम में हरी प्याज उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई बहन कृषि को पारिवारिक आवश्यकता के अनुरूप देखते हैं, लेकिन जब आज के हम समय में देखते हैं युवा साथियों को तो वो कृषि में रोजगार के साधनों को देखते हैं, तो इसी प्रकार से हरी प्याज जो है ये रोजगार की संभावना हमारे साथियों को कैसे उपलब्ध करें?
0: देखिए, हरी प्याज की खेती में जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें निरंतर कार्य मिलना चाहिए,
1: जी
0: प्याज एक ऐसी फसल है जिसको पूरे साल हरी प्याज के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि प्याज के साथ दूसरी भी स्पीसीज हैं, जैसे प्याज को हम बॉटनिकली ये मानते हैं कि एलियम सीपा समूह की है तो प्याज लगाते हैं, दूसरी एक हमने पूसा संस्थान में हमने पूसा सौम्या एक किस्म विकसित की बंचिंग ऑनियन की, उसका विशेष रूप से विकसित करने का उद्देश्य यही था कि हम किस प्रकार से हरी प्याज की खेती को बढ़ावा दें और उसमें बीमारियां कीड़े भी नहीं लगते, उसको बीज से भी बना सकते हैं। और उसमें फायदा ये है कि बंचिंग ऑनियन में अगर पूसा सौम्या को लगाते हैं तो उसमें ना तो कोई थ्रिप्स आती ना कोई बीमारी, काफी हद तक उसमें रोग और कीड़ों को सहन करने की क्षमता है। अगर हम इस प्रकार की किस्मों का चयन कर लें तो हम निश्चित रूप से नुकसान से बच सकते हैं। और ये नहीं कि बंचिंग ऑनियन आप एक बार लगा सकते हैं, इसको अलग अलग अवधि पे 15-15 दिन के बाद 20-20 दिन के बाद स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आते हो, जो आपके अनुभव जब आप साझा करते हो तो ये हमारे यूथ के लिए, युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा होते हैं। हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीक, इस विषय पर आपने बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। डॉक्टर बी एस तोमर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और प्रतिमा, देखिए जानकारी तो हो गई, आप थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए।
3: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।
4: अरे मेरे वीरा पहरा क्यों भगवा बाना, देगा यो जगते उल्हाना, बन के क्यों

0: तो अभी हमने सुना ये लोकगीत।
1: और रजनीश देखिए, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो नई नई जानकारियां और कृषि सलाह लेकर आते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ कृषि सलाह। किसान भाई बहनों, इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है, और इसीलिए हमारे किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचले भाग के स्थान पर मच्छर रुमा कीट का निरीक्षण करें। साथ ही यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों पर ही करें।
0: साथ ही कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, वे सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें, और कीटों की रोकथाम के लिए लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे।
1: तो रजनीश, ये थी बहुत ही उपयोगी जानकारी, और अब हम आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के ताजा भाव भी हम अपने किसान भाइयों से साझा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की। आलू का जो मूल्य रहा वो 15 रूपए प्रति किलो, प्याज का रहा 20 रूपए प्रति किलो, टमाटर 40 रूपए प्रति किलो और बैंगन हमारा है 20 रूपए प्रति किलो।
0: और आजादपुर मंडी में आज जो फलों के भाव रहे वो इस तरह से रहे, जो सेब का भाव रहा वो है 100 रूपए प्रति किलो, केले का भाव 25 रूपए प्रति किलो, वहीं अमरूद जो बिका वो 60 रूपए प्रति किलो।
1: तो ये थे हमारे आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के ताजा भाव।
0: आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भेज सकते हैं।
1: हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
0: तो इस ईमेल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें।
1: और अब चलते चलते अपने किसान भाई बहनों से यही कहेंगे कि किसान भाई बहनों, आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें, कम लागत में ज्यादा उत्पादन आपको मिले और आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। और इसी के साथ अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है कव्वाली का, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास की ये कव्वाली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीना, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित कई पहल की घोषणा की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना का काम पूरा, 24 अगस्त से दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हाल में हुए छात्र प्रदर्शन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बनाई। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। और नई दिल्ली में जारी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। इनमें 200 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा, 56 महिला स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं और डीटीसी राजघाट डिपो 1 में बेहतर क्षमता वाले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: ये नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से राजधानी में बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि डीटीसी ऐतिहासिक दिल्ली करनाल रूट पर इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित बसें शुरू करेगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुविधा और पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डीटीसी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी। इसके अलावा डीटीसी ने राजघाट डिपो 1 पर एक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है। इस सुविधा में 240 किलोवाट क्षमता वाले 4 ईवी चार्जर लगे हैं जो भारी व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों दोनों को चार्ज करने में सक्षम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का काम पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 1,45,00,000 गणना प्रपत्र वितरित किए गए और 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और CBI के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच करेगी। जाएगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी सीटों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का विस्तार और उन्नत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
7: इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से संबद्ध निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। इससे स्नातक स्तर पर 300 नई सीटें जुड़ेंगी। इसके अलावा डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें 125 से बढ़ाकर 200 और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में

0: CDS सीटें 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सीटें 260 से बढ़ाकर 295 और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 22 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव है। वहीं डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज में 24 नई स्नातकोत्तर सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन आज सम्पन्न हो गया। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया।
2: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियां विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सम्मेलन की व्यवस्थाओं, समन्वय और समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को सुचारू, समयबद्ध और सफल बनाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एनडीएमसी सचिव राहुल सिंह, संयुक्त सचिव शंभू हक्की सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में ऐसे कृषि उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए जो वैश्विक बाजार के मानकों पर खरे उतरें। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक और नए कृषि उपकरणों की जानकारी देना जरूरी है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 97वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को इस दिशा में काम करने पर बल दिया।
4: विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान ऐसे 500 विषय आए जिसमें किसानों ने कहा कि हमें तो इस चीज पर रिसर्च की जरूरत, और उसके बाद हमने 52 टीमें बनाई वैज्ञानिकों की, और हमने कहा कि रिसर्च उसमें करो जिसकी जरूरत देश को है, किसानों को है।
1: दिल्ली नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन और जन जागरूकता को लेकर आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराना तथा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिकों तक इन नियमों की जानकारी पहुंचाना था। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने कहा कि निगम द्वारा कचरे के स्रोत पर ही उसे अलग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली नगर निगम ने आज मटियाला और द्वारका क्षेत्रों में साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान चलाया। निगम के अनुसार अभियान का उद्देश्य सफाई और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेना, स्थानीय समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। निगम ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत किए जा रहे समन्वित प्रयासों से बेहतर सफाई व्यवस्था, त्वरित नागरिक सेवाएं और स्वच्छ मोहल्ले सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र तालकटोरा स्टेडियम में 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। सरकार ने बताया कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जल्द ऐसी व्यवस्था

करने जा रही है, जिसके अंतर्गत जिन महिलाओं ने आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी दर्ज की है उन्हें उसमें सुधार करने का दोबारा अवसर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के शुभारंभ के बाद सिर्फ 18 दिनों में करीब 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जबकि 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर देशभर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि कैट देश के विभिन्न शहरों में विशेष स्वदेशी मेले आयोजित करने जा रहा है, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित राखियों और अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने नमो भारत कॉरिडोर के पास पतंग उड़ाने और चाइनीज मांझे के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। एनसीआरटीसी ने लोगों से नमो भारत कॉरिडोर और उसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 14 अगस्त से 10 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार मेले में 20,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जहां लोग अपनी पसंद की किताबें देख, चुन और खरीद सकते हैं। ये पुस्तक मेला 23 अगस्त तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन नियुक्तियों पर सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं के व्यापक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और सशक्त नेतृत्व से इन राज्यों में भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने अमरीका की लॉर्डन लैम और एलन क्विन ली को हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रिया के कोलनिस फिलीमोन को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित कई पहल की घोषणा की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना का काम पूरा। 24 अगस्त से दावे, आपत्तियां दर्ज होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हाल में हुए छात्र प्रदर्शन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बनाई। और नई दिल्ली में जारी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय है गीत मालिका का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर और लेकर आई हूं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका, जिसमें हम बातें करेंगे, साथ साथ हम सुनेंगे फिल्मी गीतों से आधारित प्यारे प्यारे गीत जो हमारी यादों को, हमारी चीजों को हमेशा ताजा रखते हैं। ऐसे गीत जो हमें हमेशा हर स्थिति पर बनी हुई गीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम यहाँ गीत की बाहर लेकर अलग अलग चीजों में, जैसे कि अब सावन चल रहा है तो सावन पे हम एक प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये नगमा बेहद पसंद आएगा।

0: レソール。
1: ワンワンヌテレショール。
0: あれ、ババショールね。ソール、ソール、ソール。

उदास भी हो ना, तो अगर आप बारिश देखो तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है, और गरम गरम चाय और पकौड़े मिल जाए तो उसकी बात ही क्या, क्यों? हाँ जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और मैं हूं आपके साथ रहना तवर, और कार्यक्रम है गीत मालिका। आपने अभी सुना 1967 का लता मंगेशकर और मुकेश की खूबसूरत आवाज में फिल्म मिलन का ये गीत सावन का महीना। और अब हम आपको एक अच्छी सी बात ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी तमन्ना होती है कुछ करने की लेकिन हम कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कर लेंगे, इसमें हताश बिल्कुल ना होए, क्योंकि कई बार कुछ इच्छाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, हम सोचते हैं कि वो कर लें लेकिन हम शायद वो वक्त नहीं था उसे पूरा करने का, तो हताश ना होए, वक्त आगे आएगा, आशा हमेशा बनाए रखें और उम्मीद पर उसे आगे बढ़ते रहें और वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि हमेशा एक इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे मुसीबत आए, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे जिंदगी, क्योंकि एक ही बार मिलती है, और तमन्नाएं अगर आपकी हैं उसे पूरा करने की कोशिश, आपके अंदर जज्बा उतना होना चाहिए तो वो जरूर पूरा होगा। बस अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, SP बालासुब्रमण्यम की आवाज का ये खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, हमें भी आपसे मिलने की तमन्ना है। आप हमारे शो को सुनते रहें, हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें और हौसला अफजाई करते रहें। कैसे? आप हमें ईमेल आईडी से भी हौसला अफजाई कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनकर हौसला अफजाई कर सकते हैं। और हम आपको बस इतना ही कहेंगे, ये हमारा प्यार आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहे, बना रहे, आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरह से सुनते रहें। आज कहते हैं ना कि दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है, अगर हम दोस्ती को निभाएं तो सबसे अच्छा रिश्ता जो है वो दोस्ती का ही होता है। हम अपने दोस्त को सब कुछ कह पाते हैं, प्यार से, हक से डांट भी पाते हैं, और उसे अगर वो रूठ जाए तो उसे मना भी लेते हैं। और दोस्ती अगर सच्ची हो तो दोस्त की कही बात कभी भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वही है जो आपको सही आईना दिखाता है। क्या मैंने गलत कहा? नहीं ना, क्योंकि दोस्ती ना बहुत ही खुश नसीब वालों को मिलती है। आजकल बनावटी दोस्ती बहुत सारी है, सोशल मीडिया बहुत सारा है, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन असली जो दोस्त होता है वो यही होता है जब हम आवाज दें वो आपके सामने हो। अब सुनते हैं ये अगला खूबसूरत सा नगमा, दोस्ती अच्छे से निभाइएगा और जब आपके दोस्त को आपकी जरूरत हो तब उसका साथ जरूर दीजिएगा।

जी हाँ, हमने अभी दुश्मन फिल्म का लता मंगेशकर जनरल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा यह नगमा सुना। और आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम है और मैं हूं आपके साथ दोस्त, आपकी होस्ट रैना। और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन आज अगर एक खास बात कहें, जिंदगी। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। जिंदगी में अगर आपका लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सभी के पास एक तराजू होता है ना, जिसमें एक गम एक खुशी दोनों ही तराजू के अंदर होते हैं, और वो कैसे मापा जाए। कभी लगता है कि हमारा गम बहुत ज्यादा है और हमारी खुशियां कम, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरों के पास झांक कर अगर हम देखें तो उनके पास भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, शायद वो दिखाते नहीं हैं और हमें सिर्फ उनकी खुशियां ही दिखती हैं, लेकिन सबके पास कोई ना कोई गम, कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन उन परेशानियों से बाहर आकर हमें खुश रहना आना चाहिए। जिंदगी में खुशियां और हम दोनों ही होते हैं, और उसके साथ मुस्कुराकर चलना ही तो असली जिंदगी है ना। तो ऐसे ही चले। अब सुनते हैं ये हमारा खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, जिंदगी बहुत कुछ कहती है और जिंदगी जब हमें कुछ कहती है तो हम उसकी आवाज शायद सुन नहीं पाते। हमें लगता है कि ये शायद गलत है, हमारा दिल ऐसे ही कह रहा है, लेकिन कभी कभी जब दिल पहली बार कुछ कहता है तो सच कहें कई बार लगता है कि ईश्वर ने ही हमें कुछ कहा है और हम उसे सुन नहीं पा रहे। तो कई बार हम ऐसी चीजें कर जाते हैं, इंसान को पछतावा हो जाता है, लेकिन हो जाता है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं, गलतियां हमसे ही होती हैं, और अगर जो गलतियों को माफ कर दे वो भगवान का दर्जा पा जाता है। तो कहते हैं इंसान को माफ करने वाला दिल हमेशा रखना चाहिए, चाहे गलतियां किसी की भी हों, लेकिन दिल साफ रखें, दूसरों के प्रति गलत ना सोचें, गलत ना समझें उन्हें। और हालात कभी कभी किसी को गलत करने पर मजबूर कर देते हैं, तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें अगर वो सच्चे दिल से आपके लिए माफी मांगे। तो रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना जरूरी है। कम ना करें, लोगों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए प्यार और प्यार रखें, क्योंकि जिंदगी बहुत ही छोटी सी है।

जी हाँ, कुमार सानू की आवाज का ये खूबसूरत सा नगमा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, बहुत ही खूबसूरत नगमा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। और कहते हैं कि जब हम माता पिता हमारे, कई बार होता है कि हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन हमें उनकी सेक्रीफाइस कभी दिखते नहीं है। हमें लगता है ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कर दिया, उन्होंने पढ़ाना था, उन्हें पालना पोषण करना था, वो कर चुके। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो हम उनकी सेवा करें, हम उनके बारे में सोचें। कभी कभी आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि हम फोन पर लगे रहते हैं और हम अपने माता पिता से बहुत दूर रह हो चुके हैं। हमें उनके लिए वक्त निकालना बहुत भारी लगने लगा है, हमें फोन ज्यादा अपना दोस्त लगने लगा है। लेकिन दोस्तों सच बताएं, फोन से ज्यादा आप अगर अपने माता पिता को समय दें तो ये कीमती समय है। पता है, अगर हम वो चले जाएंगे जब हमारी जिंदगी से, तो हमें बहुत बुरा लगेगा और हमें लगेगा कि काश हम थोड़ा वक्त उनके साथ बिता पाते। वो काश ना काश ही रह जाता है, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रोताओं, कि हमेशा अपने अपनों से दूर ना हो, और खासकर माता पिता से, क्योंकि उनका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने जो हमारे लिए किया वो अपने से बढ़कर किया है, हमें बेशक कम लगता है, लेकिन उन्होंने अपने निवाले से हमें निवाला दिया है, ये याद रखिएगा। और उनसे दूरी न बनाए, उनसे प्यार से उनके साथ बैठे। और कुछ लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जो अपने माता पिता से इतनी दूर हैं, वो जरूर ख्याल रखें कि दूर से ही सही, आजकल इतने माध्यम है कि आप अपने माता पिता से रोज मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं वीडियो कॉल से, तो जरूर कीजिएगा और उन्हें याद रखिएगा। और कई बार ये गुनगुनाइएगा, जिए तो जिए कैसे बिन आपके।

कुछ होता है, लेकिन हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन कुछ ऐसी यादें बना के चलें, मीठी यादें बना के चलें सभी के साथ, ताकि आपके जाने के बाद वो लोग आपको याद कर सकें। कहते हैं ना, सूरत से ज्यादा सीरत अगर आपकी अच्छी है तो दुनिया आपको आपके मरते दम तक याद रखेगी। तो ऐसी यादगार चीजें बनाते रखिए। और ये चलते चलते ये वाला आपको एक नगमा सुनाने जा रही हूं कि यादें ऐसी बनाए कि याद आती रहे हमेशा एक दूसरे की, और खुश रहें हम हमेशा इसी तरीके से, और मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से यानी कि गीत मालिका से इजाजत। फिर मिलेंगे नई सुर और नई आवाज के साथ, नई विषय के साथ, नई गानों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों की मदद करते रहें हमेशा, जब तक आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं दूसरों की मदद करें, क्योंकि दूसरों के दिल पर चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून, यही है असली जिंदगी। सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: یادیں یاد آتی ہیں، یہ یادیں۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندربس چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ آئیے اب سنتے ہیں ہندی، انگلش اور اردو میں سماچار۔
2: نمسکار، آکاشوانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں کنک لتا۔ ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
3: The impact of climate change,
4: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
2: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
0: जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे लोग जाने गए हैं वहाँ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है और कि वहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा की, उस पर भी

0: काफी रोक लगाया गया है और हालात ऐसी है कि जो वहां पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरूद्व हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
3: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमरीकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वासिल अगा बेकेन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुत प्रशिक्षित मुकाबले में कल अमस्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रूपये पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, हुर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4, host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier, speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, emphasized that environmental action must remain people-centric, sustainable and responsive to the realities of developing countries.
6: We draw inspiration from the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I quote, "Our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda. Similarly, during our presidency of BRICS, we will advance in this forum with a people-centric approach and the spirit of humanity first."
5: India today said that the credibility and robustness of the country's election machinery are well established globally. Spokesperson of Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal stated this while briefing media in New Delhi this evening. Mr. Jaiswal was responding to US President Donald Trump's praise for India's election system and his reference to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's remarks on the lack of voter identification in US elections. On the massive earthquake in Indonesia, Mr. Jaiswal said, India is deeply saddened by this tragedy.
0: In Indonesia, it was rocked by a major earthquake in which a large number of people have been killed. We are deeply saddened by this tragedy and we convey our condolences on the precious lives lost. We also pray for the early recovery, the speedy recovery of those who are injured and for the safety of people who are involved in rescue and relief efforts. In this difficult hour, India stands in solidarity with Indonesia.
5: On Pakistan's reaction to India's claims over Shehzad Bhatti terror network, the spokesperson said that India takes issue of terrorism very seriously.
0: Terrorism matters. These are very serious things. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have, over the last several years, taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we will continue to take.
5: On protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the MEA spokesperson said that many lives have been lost there and the situation is such that the local population needs and deserves sympathy and solidarity from the international community. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced that public sector banks will launch a month-long campaign called Banking for Youth from the 2nd of October this year. The minister was delivering her concluding address at the Public Sector Bank Conference in New Delhi this evening. She said the campaign will work as a platform for a sustained engagement with young customers, facilitating their future entrepreneurial journey.
7: Banks could also complement their banking proposition with lifestyle-linked benefits. We saw in the data that you presented that 66% of all the UPI transaction is being undertaken by those who are in the age group of 18 to 29. That's a world there waiting for you to access them. They are tech savvy. The presenter did mention they are very tech savvy youth.
5: Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today.
8: हमारे पास सब कुछ है.
9: We have everything, fruits, flowers, vegetables and grains. Our aim is to ensure that these products

हमारे यहाँ शिया समात कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्रेडिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 9:20 पर गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार, जिसके तहत आज आपको सुनवाई जाएंगी जगजीत सिंह की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी, डॉक्टर बशीर बद्र, सुदर्शन फाखिर और कुंवर महेंद्र सिंह सहर की लिखी हुई गजलें। रात 9:45 पर आप सुनेंगे खबरें और 9:55 पर नशर होगा प्रोग्राम हेल्थ सजेस्ट, के तहत आज हम जानेंगे दांतों के हवाले से कुछ अहम बातें। और रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा और 10:30 पर नशर होगा आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नखबों का प्रोग्राम तामीर इरशाद। इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11 बजे खबरें बर सगीर से नशर होंगी और 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। रात 11:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बजे मौसीकी के तहत दादरा में देखो सखी विदोषी शांति हिरानंद की आवाज में। रात 12 बजे अरमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत विलायत खान का सितार पर बजाया हुआ राग बिहाग। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 बजे उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं बशीर बद्र और नजीर बनारसी, मधु सुल्तानपुरी और कुंवर महेंद्र सिंह सहर की लिखी हुई गजलें जगजीत सिंह की आवाज में।

0: अपने दूसरे इनिंग में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। आज शाम जब खेल खत्म हुआ तो सोनल दिनुषा और धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए मानव सूथर ने 2 विकेट हासिल किए। इससे कबल दिन में भारतीय टीम अपनी दूसरे इनिंग्स में 193 रन पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की जीत के लिए 372 रन का निशाना रखा। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बने। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया के कैलेंस फिलिमोन को शिकस्त दी। पहले गेम में लक्ष्य 16-21 से पीछे थे। बाद में उन्होंने अगले दो गेम एकतरफा तौर पर 21-8 और 21-4 से जीत लिए। खवातीन के डबल्स में भारत की ट्रेसा जोली और गायत्री गोपी चंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की जोड़ी ने अमरीका की लाउरेन और अलिसॉन की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-15, 21-12 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीक की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी के भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्जाम और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जाम की छानबीन के लिए एक आला अख्तियारियाती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि अब नए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमरीका के साथ तयशुदा उसके तमाम शरायत पूरी नहीं हो जाती। मर्दों की क्रिकेट में चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरफ्त मजबूत हो गई है। मेजबान टीम 372 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है और ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल भारत की खवातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आइए इस प्रोग्राम के तहत जानते हैं दांतों से मुतालिक उनकी देखभाल के हवाले से कुछ खसूसी बातें डॉक्टर मीनाक्षी से।
2: दांतों की रख रखाव के लिए पहले तो हमको दांत की सफाई की ध्यान रखनी पड़ेगी।
3: जी जी जी जी,
2: जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी जो डेंटल प्रॉब्लम है वहीं से शुरू होती है।
3: ओरल हाइजीन जिसे कहते हैं। ओरल हाइजीन से ही हमारी जो दांतों की प्रॉब्लम्स है वो शुरू होती है। वो क्या क्या, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए?
2: पहले तो आपको मेन जो है फॉरमोस्ट वो है ब्रशिंग टेक्निक।
3: जी,
2: है ना,
3: प्रॉपरली मतलब दांतों की सफाई।
2: हाँ जी,
3: वो कैसे?
2: वो ये है, आपको पहले जो हम ब्रश ले रहे हैं
3: जी,
2: वो सॉफ्ट होनी चाहिए।
3: करेक्ट,
2: ताकि
3: वो बहुत मुलायम
2: होनी चाहिए,
3: हार्ड नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे मसूड़े वगैरह वो
2: ना घिस जाए।
3: जी, उसके बाद
2: हार्ड होती है तो ब्रश हो गया। फिर हमारे टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए और कोई भी प्रकार की पाउडर यूज नहीं करना चाहिए।
3: ये दंत मंजन वगैरह जो ये आते हैं,
2: हाँ,
3: जो आम कंपनियां वगैरह, हाँ, बताते हैं हमारा दंत मंजन लीजिए, ये लीजिए, ये सब नहीं करना चाहिए।
2: नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो पाउडर की पार्टिकल होती है वो काफी बड़ी साइज की होती है और वो हमारे दांत की जो कवरिंग है ना, लेयर होती है, इनामिल करके बोलते हैं, उसमें नुकसान पहुंचाती है, वो घिस जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमको पेस्ट यूज करना चाहिए।
3: पेस्ट ही यूज करना चाहिए दांतों को सफाई करने के लिए। पेस्ट का इस्तेमाल जरूरी है।
2: जरूरी है
3: जी।
2: और ये ब्रश और पेस्ट की यूज करके हमको सुबह और शाम को 2 टाइम ब्रश करना होता है और ब्रशिंग टेक्निक भी होती है। हाँ, आपको कैसे ब्रशिंग

0: करना है,
1: जी
0: जैसे ऊपर की दांत होते हैं
1: जी
0: आपको वो ब्रश की जो ब्रिसल्स होते हैं
1: जी
0: उसको दांत के ऊपर रख के ऊपर के दांत के लिए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करके इसे घुमा के
1: गोल गोल गोल नीचे की तरफ,
0: हाँ घुमा के थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ करेंगे
1: जी जी,
0: और नीचे के दांत के लिए ऊपर की तरफ,
1: ऊपर की तरफ उसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ करना है ताकि जो मैल वगैरह वो सारी पूरी साफ हो जाए,
0: दो दांत के बीच में जो होती है
1: जी
0: वो साफ हो जाए
1: जी जी जी। अच्छा ये जो आपने कहा कि ब्रश शाम को मतलब दो बारी करना चाहिए, ये हमें शाम का जब हम खाना खाते हैं उसके बाद करना चाहिए?
0: हाँ डिनर मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि आप लोग सोने से पहले डिनर करने के बाद ब्रश जरूर करिए।
1: उसकी क्या वजह है?
0: यही है कि ये जो खाना हम खाते हैं वो दो दांत के बीच में फंस जाते हैं
1: जी जी,
0: तो इसी जगह में जर्म्स रह के
1: वो उसमें पनपते हैं।
0: हाँ जी, तो उसमें क्या होता है एसिड फॉर्मेशन होती है और वो एसिड हमारी इनामेल को डिजोल्व कर देती है,
1: डिजोल्व कर देती है।
0: हाँ तो वो उसे वो डिजोल्व होने के बाद वहां पे होल जैसा बन जाता है,
1: छेद सा बन,
0: छेद बन जाता है जिसको हम डेंटल केरीज बोलते हैं,
1: डेंटल केरीज बोलते हैं।
0: हाँ,
1: हम आम भाषा में कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया।
0: हाँ,
1: ये कीड़ा लगना क्या होता है ये हमारे आम सामने हमारे जो सुनने वाले हैं इनको ये आप बताइए डॉक्टर साहब कि ये कीड़ा लगना ये क्या होता है?
0: हाँ सही बोला आपने, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है
1: जी, जी,
0: और
1: जी,
0: कीड़ा चल रहा है, कीड़ा जरूर निकालिए डॉक्टर
1: जी जी, ये आप बताइए तो क्या होता है ये कीड़ा?
0: ये एक्चुअली कीड़ा नहीं होता है
1: जी,
0: ये जर्म्स होते हैं, ये कीटाणु होते हैं
1: जी।
0: हाँ
1: जी,
0: ये जो कीटाणु है हमारे मुंह में रहते ही है
1: 24 घंटे
0: रहते हैं
1: जी जी।
0: हाँ इनका कभी नंबर बढ़ जाती है और जैसे हम क्लीनिंग कर लेते हैं दांत की सफाई कर लेते हैं
1: जी,
0: टंग क्लीन कर लेते हैं उसके बाद इसका नंबर थोड़ी कम हो जाती है
1: जी,
0: लेकिन
1: जी,
0: ये हमारे मुंह में रहते ही है
1: जी।
0: तो जब हम खाना खा लेते हैं और दांत के बीच में हमारी जो कुदरती स्पेस है
1: जी,
0: उस जगह में जब खाना फंस जाती है ये कीटाणु वहां पे जाके
1: पलना
0: शुरू हो
1: जाती है।
0: हाँ सही बोला आपने
1: जी जी,
0: तो उससे क्या होता है वो वहां पहुंच के अपने एसिड वो खाने को फर्मेंट करके एसिड फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे जो दांत की जो ऊपरी कोटिंग है
1: जी, ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है,
0: हाँ उसको इनामेल बोलते हैं
1: जी जी,
0: और जो डिसॉल्व कर देते हैं
1: जी।
0: तो इस चीज को ये जो है
1: तो ये छेद उसी डिसॉल्व होते होते ये
0: छेद बन जाती है
1: जी,
0: तो ये जो है आप जो कीड़ा बोल रहे हैं वो कीड़े की वजह से नहीं हो रही है
1: जी,
0: ये इसमें ये जो कीटाणु हैं जर्म्स हैं वो बनाते हैं।
1: अच्छा ये कीटाणु आपके दांत को आहिस्ता आहिस्ता खा जाते हैं और वहाँ छेद करके उसमें वो सुराख सा बनाते हैं।
2: सुनिए अभी आप सुन रहे थे दांतों के रखरखाव के हवाले से कुछ खुसूसी बातें डॉक्टर मीनाक्षी की जुबानी। इसी के साथ प्रोग्राम हेल्थ टिप्स खत्म होता है, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्रा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200। रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रोस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा। और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाए ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में

0: Marshall. और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: वार्म वेलकम सुषमा।
2: थैंक यू राजेश। थैंक यू निखिल।
3: बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ डिस्क्लेमर। Views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई, जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए, जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे।
3: Benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 493 points or 0.63% to close at 77,235. The Nifty slipped 133 points or 0.55% to settle at 24,155. In the broader market of the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended the decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे। वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
3: इन दी सेक्टरल इंडस्ट्रीज ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। Among the top laggards, Focused IT declined 1.8%, Information Technology dropped 1.7%, and Realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रूपये पर बंद हुआ। सुषमा, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। सुषमा, आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई। और साथ में अगर हम पिछले दो हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के दो दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट जो है, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में, उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में है उनकी सोच के ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलेटिलिटी बहुत हो रही है आज के दौर पे। एकदम से वो तेल के दाम

0: 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इन्फ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं।
1: देखिए, ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है। मतलब इन्फ्लोस की बात आपने की, ये पीएनआरपी की वजह से हुई है, और लेकिन उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था। और रूपी डिप्रिसिएशन क्या हम समझ सकते हैं कि वो कम, मतलब हॉल्ट हो गई है, बंद हो गई है डिप्रिसिएशन, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है रूपी। तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट, पर मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे, एक तो हमारे रिजर्व बहुत अच्छे हैं इस वक्त, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त। मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में, जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त।
0: इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें हम मतलब किस तरह से देखती हैं, क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं?
1: तो देखिए, आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है। अभी ये एफसीएनआरबी का जो ये इतने से स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे, नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी, इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और ये कि हमारे यहाँ रुपीस, मतलब डॉलर्स डालने से उनको आराम से उनको निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसमें साइड इफेक्ट ये है कि मतलब रूपी की डिप्रिसिएशन कम होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतना वो अप्रिशिएट नहीं हुआ रूपी, लेकिन जो गिरने की जो तकलीफ हो रही थी वो तो कम हो गई है। हाँ, अगर आगे के दिनों में और कुछ कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आरबीआई ये वक्त वक्त पर स्कीम चलाती रहती है।
0: बात है अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। सुषमा, इस तरह की जो खबर है, अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम?
1: देखिए, मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुनाई नहीं। जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे क्या बोले आप?
0: जी, मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं।
1: अच्छा, तो ये जो क्रेडिट फ्लोज जो है ये एकदम से बहुत बढ़ गया, और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है। और यही एक इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो इस वक्त काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोज की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है वो काफी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा.
0: मूविंग ऑन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द सिक्स पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट PIL कंप्राइजिंग 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स विद एन एस्टिमेटेड बिजनेस पोटेंशियल ऑफ 3,070 crore rupees. These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, sub-assemblies, spares, components and raw materials. The ministry said that this sixth PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defense manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
1: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense but in space. So you have so many now private, public-private collaborations as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas in the manufacturing sector.
0: आगे बढ़ते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए. वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करें. श्री फडणवीस ने राज्य की प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर बल दिया. वहीं भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य का आपसी साझेदारी है, जो कि बहुत ही निमिशाल क्षमताओं को दर्शाता है. सुषमा, आज ये जो बैठक हुई मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. हालांकि इस वक्त जो है हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री ये भी उतना ही महत्व मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उनका बहुत बड़ा योगदान है. लेकिन ये बढ़ना चाहिए. और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे. तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए. लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां यहाँ आने के लिए. जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, वो बता देंगे. और उससे ये जो प्रोसेस हैं स्ट्रीमलाइन हो सकती है.
2: सो सुषमा, बोथ द एम्बेसडर एंड द इंडियन डेलीगेट ऑल्सो सेड दैट टेकिंग इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड टू $500 billion by 2030 reflects the unmatched potential of the

0: countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it moving towards that?
1: We really can't say, because the Indo-US trade deal seems to be moving at a snail's pace. You know, I mean, we have been waiting for it since last year. And we keep hearing from both sides that, you know, it's just on the verge of being concluded. And yet it doesn't come. And in the meantime, we have all these stories coming in about tariff imposition under Section 301, under the new Congress legislation about against countries which are importing, buying oil from Russia. So these are things on which more clarity needs to be given by the American government. And it's only when these tariff barriers as well as non-tariff barriers are eased that we can think of raising trade to, you know, this kind of exponential level.
0: Moving on, the fifth edition of SEMICON India 2026 will be held from the 17th of next month in New Delhi. The three-day conference will witness the participation of more than 500 exhibitors and around 240 exhibiting companies from more than 40 countries. Prime Minister Narendra Modi will chair a roundtable conference with global CEOs from the United States, Japan, South Korea, Singapore, Germany, the Netherlands and Malaysia. The theme of the fifth edition of the SEMICON India conference is Silicon to Systems, Building the Ecosystems.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 ढाई प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% नीचे आ गया.
0: Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the US and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushmat, what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
1: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, $70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
2: आगे बढ़ते हैं. सोना मामूली गिरावट के साथ आज 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1% से अधिक की तेजी के साथ 2,33,164 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. सुषमा, जिस तरह से गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है, बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है, क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
1: देखिए, गोल्ड का जो इस वक्त वो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह हैं, पिछले दो सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है. साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया. चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बढ़ गया है, क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त. तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लेटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे.
0: सुषमा, व्हाट इज द वन की मैसेज दैट यू विल गिव टू द इन्वेस्टर्स? शुड दे रिमेन कॉशियस, यूज द करेक्शन टू अक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स, और वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन क्रूड, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स?
1: आई थिंक नंबर वन, ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑलवेज, एंड the second is that you know, you have to look at the quality of the company.
0: They have to be cautious.
2: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Thank you,
0: Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 500 points, Nifty settles below 24,200, regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year, and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow.
2: Namaskar.

0: कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 10:30 हो चुके हैं। आप हमारे यहाँ समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 kHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्रेश पर। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नख्मों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। अपनी फरमाइशें आप हमें लिख कर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस ESD@gmail.com के जरिए। हमारे इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

या प्रेस सुनात कर रहे थे नगमानिगार साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ नगमा गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसके मौसिकार थे रवि। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, इसको सुना चाह है कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन बंठाल, शबे मनट्टी और आसिफ अकबाल ने। विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकित अनिकेत चौहान महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं और सुबिन दरडे मोहन का करंगली महाराष्ट्र से सुनने की ख्वाहिशमंद है। विदर्भ सुनना चाहते हैं वसंतराव भोज ने, पी एस नौहानकर और सुनना चाहते हैं मनोज जेठवा, अर्चा जेठवा खंडवा से और श्रीरामपुर से रविदास कोटेजा, अंसर कोटेजा, आशीष कोटेजा राजकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता सुनना चाहते हैं। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवान छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं जोंदी के सोलिसी के सो सहारनपुर से। सिद्धि गुप्ता, रुद्र भाई गुप्ता और कुशेश्वर कांति गुप्ता सुनना चाहते हैं राजनगर कांति निकेतन से और लखनऊ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मुकेश गुप्ता, गंडागल चौक से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया सुनना चाहते हैं और अजीत पाल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा सुनना चाहते हैं सरगुजा में से और आगा खान, आगा उदा खान और अमल खान गंगड़वारा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं अजीत बासर, प्रमिला बासर, भावेश कुमार बासर विराम काम से।

तो अभी आप सुन रहे थे नगमानिगार शकील बदायूनी का ये लिखा हुआ नगमा गीत हजरत की आवाज में फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से, जिसके मौसीकार थे हेमंत कुमार। हमें इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुना चाह रहा है मोहम्मद सैयद अब्बासी ने, परवीन अब्बासी, शनवाज अरफराज अब्बासी ने, ऊपरकोट मोहल्ला चुगनट्टी बुलंदशहर से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला नेजा सुनना चाहते हैं, और जाको राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी और शंभुदयाल खटक सुनना चाहते हैं। निजामा तेलंगाना से मैं ईद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा, जगरा।

सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके मौसीकार थे मदन मोहन और बोल थे राजा मेहर अली खान के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसको सुना चाह है इम्तियाज इमाम आतिश, तायरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा ने गिरिडीह झारखंड से, फरहीन अब्बासी, दानिश गुन्नौरी और इस्लाम गुन्नौरी गुन्नौर से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और कीर्ति अरोड़ा राजस्थान से, देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर सुनना चाहते हैं नागपुर से और ओम गायकवाड़, अमर पाली गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़ सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से, महेंद्र सरगटे, विजय सरगटे, मिलिंद सरगटे और उज्जवलगर सुनना चाहते हैं और बड़गाम से सुनना चाहते हैं कुसुम।

आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा फिल्म बेटी बेटे से, जिसके मौसिकार थे शंकर जयकिशन। शब के 11 बज चुके हैं, प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। इसी दौरान सुनते हैं खबरें बरेसगीर से। ये आकाशवाणी है बरेसगीर की खबरों के साथ, मैं तनवीर। पहले खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीफ की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी के भरोसे मंडी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्जाम और सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जाम की छानबीन के लिए एक आला अख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हॉर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमेरिका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शरायत पूरी नहीं हो जाती। मर्दों के क्रिकेट में चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरफ्त मजबूत हो गई है। मेजबान टीम 372 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है। और ट्रीसा जोली और गायत्री गोपी चंद पर मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के लिए अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का आज एक बार फिर इरादा किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात से मुतालिक वज़रा की 12वीं मीटिंग के अख्तिताम के मौके पर एक मुश्तरका वजारती बयानिये में आज कहा गया कि ब्रिक्स मुल्क पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे की मुकम्मल और मुअस्सर अमल आवरी में पेशरफ्त, आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस मुआहदे के तहत अपने अज़्म को एक बार फिर दोहराते हैं। मेंबर मुल्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से फाइनेंस की दस्तियाबी समेत बैन अल-अक़वामी ताउन में इजाफा लाजमी है ताकि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के अहल हो सकें और साथ ही पायदार तरक्की और गुर्बत को जड़ से खत्म करने के मामले में पेशरफ्त कर सकें। ब्रिक्स ममालिक ये मानते हैं कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन और इनके बाहर भी, जिसमें जुनूब

ताउन के जरिए भी ताउन और शराकतदारी शामिल है से अवाम मरकूज अंदाज नजर के साथ पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। इस बरस भारत ब्रिक्स की सदारत कर रहा है जिसका मौजू है मुजाहिमत इख्तराआत ताउन और पायदारियत के लिए तामीर। ब्रिक्स वज़रा ने पायदार तरक्की का अहल होने की हैसियत से सर्कुलर मईशत में पेशरफ्त के ताल्लुक से भारत की क्यादत के लिए अपनी सताइश का इजहार किया। इससे कबल मीटिंग से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि माहौलियाती कार्रवाई आवाम मरकूज पायदार और तरक्की पजीर ममालिक के हकायक के तय जिम्मेदार होनी जरूरी है। भारत ने आज कहा है कि उसके इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी और वसत आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अमरीकी इंतखाबात में वोटरों की शनाख्त की कमी के मुतालिक उनके बयान के हवाले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तर्जमान ने कहा कि भारत के इंतखाबी निजाम ने मुस्तकिल अपनी मजबूती और भरोसेमंदी का मुजाहिरा किया है। इन खबरों के मुतालिक के भारत को बांग्लादेश से तवानाई की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ तवानाई का एक जारी सिलसिला रखता है। उन्होंने कहा कि जहां तक इजाफी दरखास्त का ताल्लुक है भारत अपनी जरूरियात रिफाइनिंग की सलाहियत और अपनी जानिब से दस्तयाबी को पेश नजर रखते हुए उसका जायजा ले रहा है। शहजाद भट्टी दहशतगर्दी के नेटवर्क के बारे में भारतीय दावों के तहत पाकिस्तान के रद्दअमल पर तर्जमान ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के मामले को इंतहाई संजीदगी से लेता है। जनाब जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने की भारत की लड़ाई जारी रहेगी और दहशतगर्दी की इस लानत को शिकस्त देने के ताल्लुक से जिस किस्म की भी कार्रवाई दरकार होगी भारत वो कार्रवाई जारी रखेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों एक साबिक डीजीपी और सीबीआई के एक साबिक डायरेक्टर पर मुश्तमिल इंतहाई बाख्तियार कमेटी तश्कील देगी जो दिल्ली में हालिया एहतजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और पुलिस अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जाम का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की क्यादत वाली तीन जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि कमेटी की तश्कील के मुतालिक एक हुक्मनामा कमेटी में शामिल करने के लिए दीगर मेंबरों के मुतालिक मुख्तलिफ फरीकैन से तजावीज मौसूल होने के बाद कल जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आला अख्तियाराती कमेटी को हकीकत का पता लगाने के हदफ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उसे तमाम जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएगी। अदालत ने कहा कि कमेटी जिंसी एतबार से हमला किए जाने के मुतालिक और ख्वातीन अहलकारों को ऑनलाइन हरासा किए जाने नीज सोशल मीडिया के जरिए दीगर जद पजीर अफराद को निशाना बनाए जाने के सिलसिले में लगाए गए इल्जाम की जांच भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि वो ये हिदायत भी देगी कि दिल्ली में 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के दौरान तशद्दुद की वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आला अख्तियाराती कमेटी के सपुर्द की जाए ताकि वो इसका जायजा ले सके। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाएं ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मुकामी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की सुनवाई करते हुए तीन मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत यह हुक्म दिया गया है।
ईरान ने आज कहा है कि जब तक अमेरिका के साथ दस्तखत किए गए 14 नुकाती मुफाहमतनामे के तहत ईरान की सभी शरायत पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आबनाए हॉर्मुज बहरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। तेहरान ने इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोले जाने की गैर मुल्की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने

और फौजी कार्रवाई को रोकने से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मजीद महाज आराई के खतरनाक नतायज की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया दुश्मन की कार्रवाइयों और जारहियत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी ये रायजनी तरफैन के दरमियान मफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने की खातिर अमन बातचीत के लिए 60 दिन की मुद्दत के खत्म

भाटी नई दिल्ली से कमल बालूजा, मधुबालूजा और सागर बालूजा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और चेन्नई से शाहिद अली, इफ्फत फारूकी, इफ्जा अली सुनना चाहते हैं।

सुनने में भी आप सुन रहे थे बरखा फिल्म से ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। हावर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज में, जिसको सुना चाहा है कांडला बंदरकस से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी ने, और राजकोट से सुना चाहते हैं जगदीश जौहरी। मुसरत जहानाज फरज जहानाज तरज जहानाज सुनना चाहते हैं नाल मंजिल में सुलसीतामढ़ी से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं श्याम गीते वंदना गीते कार्तिक गीते महाराष्ट्र से, और छत्तीसगढ़ से मिशाल विश्वकर्मा मीरा विश्वकर्मा चेतन विश्वकर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं अनिल इंगोले अर्चना इंगोले सर्वेश इंगोले अकोला से, और सुनना चाहते हैं रायपुर से डॉक्टर नीलम मेघ डॉक्टर वंदना कुमार योगेंद्र नायक गीता नायक और निहारिका सुशांत नायक कासगंज से सुनना चाहते हैं, और अभिजीत गोहनकर सरिता गोहनकर और अर्जुन गोहनकर महाराष्ट्र सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। अनवर इंतजार अंजुम बिहार सुनना चाहते हैं, और गंजवारा से शमसुल कमर राय शान फातिमा अरमान खान सुनना चाहते हैं। डीएम सोनम शेख हवाया शेख मोहम्मद अरीफ शेख मुंबई से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

में अभी आप सुन रहे थे पहली नजर फिल्म से मुकेश की आवाज में ये नगमा, जिसकी तर्ज बनाई थी अनिल विश्वास ने। हाजिर इस प्रोग्राम के आखिरी पेशकश छाया फिल्म से, इसको सुना छाया बाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव बसंत प्रीगू ने और मास्टर परवेज इमरानाज और नवाज शेख सुनना चाहते हैं गंडनवाला से। उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशोदा चुपाकर झारखंड सुनना चाहते हैं। सैयद यूनुस सैयद नोमान तनवीर मसरत मराठवाड़ा से सुनना चाहते हैं। और समय के ख्वाहिशमंद वलील अंसारी आसमान अंसारी मोहम्मद सुल्तान अंसारी डुमराव से। और सुनने के ख्वाहिशमंद ने डॉक्टर रबीर रसन शबनम अनवर भुवन प्रकाश गौतम गंडनवाला से। और सुनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिर्जा सिद्दीकी मुनव्वर हुसैन अंसारी फैजुल्ला सिद्दीकी गंडनवाला से। इंदौर सुनना चाहते हैं अनिल काव चाली। और कलकत्ता से सुब्रत चौधरी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: अभी आप तो सुन रहे थे प्रोग्राम तामील इरशाद के तहत फरमाइशी फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
2: जापान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट सहित कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। इस इन्वेस्टमेंट मीट में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कि हम भारत और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों और जापानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
3: भारत और जापान के संबंध बहुत प्राचीन हैं और बहुत गहरे हैं। जापान में भी बहुत सारे लोग बुद्धिज्म के प्रसार को मानते हैं और उसके लिए वो भारत तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरह जापान ने हमेशा भारत की आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के लिए किस तरह का योगदान दिया है। अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो हम सबको याद है कि 80 के दशक में किस तरह निवेश भारत में आया था और उसने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिल्कुल बदल दिया। दिल्ली की मेट्रो, उसमें जापान का योगदान रहा, आर्थिक भी, उन्होंने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। अब आप देख रहे हैं कि भारत में मेट्रो की व्यवस्था है और बहुत तेजी से उसमें प्रगति हो रही है। इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रेलवेज का, उसमें भी जापान की ओडीए उनका है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, उससे बहुत मदद मिली और इस समय पूरा देश आशा कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चलेगी, उसका काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसमें भी जापान की आर्थिक सहायता भी है और टेक्नोलॉजी भी जापान की है। तो इस तरह एक ही सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जापान का बहुत योगदान।

0: रहा है और इसका एक जो भाव है वो मित्रता का है। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत ऊपर आता है और सब हमें याद है कि किस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भारत की तरफ आ रहे थे म्यांमार से, तो उसमें जापान का बहुत सहयोग था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुखद यादें हैं और उसमें भारत और जापान की आगे की यात्रा के लिए एक ये बहुत ही अच्छी नींव है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी इमारत भारत और जापान की मित्रता की, सहयोग की और एक दूसरे की मदद करने की इस समय बनाई जा रही है।
1: अब जापान का जो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है भारत की यात्रा पर, ये उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग अटेंड करेगा जिसमें इस बैठक में राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसका मकसद है कि जापानी कंपनियों की व्यावसायिक दिलचस्पी और को ठोस निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या संयुक्त परियोजनाओं को और बड़े पैमाने में रोजगार पैदा करने में बदलना। आप कैसे देखते हैं इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को?
0: इस समय भारत जापान का जो सहयोग है, जो मित्रता है, उसका फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट पर है। भारत और जापान के बीच में इस शताब्दी में शुरू से ही वार्षिक समिट होती है जो प्रधानमंत्रियों के बीच में 2026 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें जापान की प्रधानमंत्री फुमियो ताकेशी भारत आई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर। और उसमें और उससे पहले जो मीटिंग हुई थी पिछले वर्ष, ये निश्चय हुआ था कि 10 साल में जापानी कंपनी 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करेंगी, जो करीब 60,000 करोड़ करीब संपत्ति है। तो इसमें कुछ काम तो हो चुका है और जब जुलाई की मीटिंग जो हुई थी उसमें 150 जापानीज कंपनियां आई थी और 120 एमओयू उस समय साइन हुए थे जिनकी टोटल निवेश होना था 12.5 बिलियन डॉलर। अब इस समय जो लखनऊ में एक चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस होगी और बातचीत होगी, उसमें भी 150-200 जापानीज कंपनी आ रही है और मेरा मानना है कि बहुत सारे एमओयूज वहां पे हस्ताक्षर उन पर होंगे और यूपी की प्रगति बहुत तेजी से इस समय हो रही है। भारत तो विकसित भारत की तरफ बढ़ ही रहा है और उत्तर प्रदेश में जैसे जयवर एयरपोर्ट नया आ गया है, इंडिया पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो तरह तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयत्न कर रही है कि विदेशी निवेशक जो भारत आए उनके लिए कोई अड़चन न आए और बहुत जल्दी जो भी वो निर्णय लें, जो भी वो निवेश के लिए उनका जो प्रोजेक्ट है, जो सोच है, उसको एक रियलिटी का रूप दिया जाए।
1: विजिट आयल, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 25-26 में जापान के साथ भारत का कुल व्यापार 27.48 अरब अमरीकी डॉलर का था, जिसमें 6.04 अरब अमरीकी डॉलर का निर्यात और 21.44 अरब अमरीकी डॉलर का आयात शामिल था। 2024-25 में जापान के कुल व्यापार में 1.4% हिस्सेदारी के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा, जबकि भारत के कुल व्यापार में 2.1% हिस्सेदारी के साथ जापान 17वें स्थान पर रहा। भारत में जापान का एफडीआई मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, फाइनेंशियल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आया है। भारत में लगभग 1500 जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आप इस व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है?
0: इस समय व्यापार भी जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है उससे कम है, निवेश की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अभी जुलाई में जब प्रधानमंत्री सानिया ताकेशी भारत में थी तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दोनों नेताओं ने अपनाया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी रेजिलियंस पर। तो नया निवेश जो होगा वो नेचुरल गैस स्टॉक पाइलिंग की एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, एक जापानीज निवेश ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा में लगने का विचार है, क्योंकि भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसके लिए ग्रीन अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, उसमें काफी निवेश भारत में हो सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत अधिक बात चल रही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है पर उनको रक्षा के जो इक्विपमेंट उसके निर्यात पर पहले कुछ उसमें रोक थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको उन्होंने हटा दिया है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स

0: एक नया आयाम खुला है जिसमें कि भारत और जापान बहुत सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय दोनों देश चीन पर बहुत अधिक निर्भर हैं और दोनों देश ये चाहते हैं कि चीन पर ये जो निर्भरता है क्रिटिकल मिनरल्स की, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की, वो कम हो। उसके लिए जापान भारत में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की, भाई क्रिटिकल मिनरल भारत में कहाँ कहाँ है और उसमें उनको रिफाइन करने में उसमें भी मदद करेगा। और मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, इस पर भी काफी ये देखा गया है कि जो एक्टिव पीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो एक्चुअल दवाई होती है, उस पर भी दोनों देश कुछ चाइना पे ज्यादा निर्भर है। तो उसको भी देखा है कि दोनों देशों ने निर्णय किया है कि उसमें एक दूसरे की मदद करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। मेडिकल डिवाइसेस आजकल देखिए, अस्पताल में जाए तो नया नया इक्विपमेंट रोज नजर आता है, रोबोटिक सर्जरी है, तरह के एक्सरे वगैरह है, एनएमआर है, बायोटेक्नोलॉजी। तो अब दोनों देश देख रहे हैं कि नए रास्ते ढूंढे जाएं, कि दुनिया जिस तरह प्रगति कर रही है, एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जुलाई में कहा था कि जो मीटिंग उन्होंने की है प्रधानमंत्री सानी ताकाशी के साथ, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कैसे भारत भी ट्रांसफॉर्म, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल, ऊंचे लेवल तक पहुंचे, और उसकी जो जड़ में होगा वो एक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस समय एक कगार पर खड़ी हुई है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी वजह से सब आ रहा है, और भारत और जापान मिलकर एक और एक 11 होते हैं, और भारत की स्किलिंग हमारे आईटी के इंजीनियर्स, उनका तो लोगों दुनिया मानती है, और जापान की टेक्नोलॉजी मिलकर बहुत ही अच्छा काम अपने लिए, अपने दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए कर सकते हैं।
1: जापान में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, क्या आपको वहां भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बढ़ाने की संभावना नजर आती है और वो किन क्षेत्रों में हो सकती है?
0: इस समय भारत की कंपनियां अधिकतर सर्विस सेक्टर में है, या सॉफ्टवेयर या फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में अधिक है, और मैं समझता हूं कि भारत की कंपनीज वहीं ज्यादा काम कर सकती है जहां कुछ ह्यूमन लेबर की आवश्यकता हो, स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता हो, और या वहां की इंडस्ट्री को कुछ सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज और इस तरह की आवश्यकता हो। पर हमारे जो निवेशक हैं और हमारे कंपनीज हैं, उनको नए नए रास्ते वहां ढूंढने चाहिए, जिससे कि भारत भी वहां पे जापान में निवेश कर सके, और भारत की कंपनियां भी जापान के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर जापान की इकोनॉमिक प्रगति में अपना योगदान कर सके।
1: अभी जापान में लगभग 59,000 भारतीय रह रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं, और दोनों देश जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर का हो, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: जापान की जनसंख्या इस समय धीरे धीरे कम हो रही है, वहाँ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है, बहुत एजिंग जनसंख्या है, क्योंकि जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ऊंची है, और इस सब के लिए जापान की सोसाइटी को जो यंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, डे केयर में, एजेड केयर में भी उनको बहुत लोगों की आवश्यकता है, और एक तरफ से तो वो जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, कुछ रोबोटाइजेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा वहां पे जा रहे हैं, पर सर्विस सेक्टर में भी जो अवसर हैं वो भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और प्रोफेशनल्स जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए बहुत नए अवसर वहां पर खुल सकते हैं। भारत से टूरिज्म जापान अब बहुत बढ़ना शुरू हुआ है, और जापान में क्योटो पुराना राजधानी है उनकी, वहां बहुत लोग जाते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट मंदिर हैं, एक नागासाकी के रास्ते में है, टोक्यो में बहुत स्थान है। जापान से भारत लोग बुद्धिस्ट सर्किट पर काफी आते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो आते हैं, क्योंकि वहां टाइगर, लायन, इस तरह हाथी वगैरह जापान में नहीं है, तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से भारत में टूरिज्म को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया भारत में होती चली जा रही है, एयरपोर्ट अब आप जाए पूरे भारत में, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हर जगह, छोटी छोटी जगहों पर भी खुल रहे हैं, क्योंकि जापानीज जब आते हैं तो कुछ वो बहुत चाहते हैं कि सब चीज बिल्कुल ठीक चले, स्मूथली चले, और भारत उस दिशा में बहुत प्रगति

0: का है और प्रगति का रहा है। टूरिज्म भी दोनों देशों का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा मैं समझता हूँ।
1: सर, इस संदर्भ में आप दोनों देशों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज की संभावनाओं को कैसे देखते हैं?
0: देखिए जापान में यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होती है वो जापानीज भाषा में होती है, तो वहाँ भारत के विद्यार्थी जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पर जाते हैं, पर बहुत अभी संख्या उनकी कम है। पर उसका एक रास्ता ये ढूंढा गया है कि भारत के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जापानीज भाषा पढ़ाने के अवसर बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। ये कहा गया था कि करीब 30,000 भारतीयों को जापानीज भाषा में अच्छी लेवल की जिस बोल सके उनको ट्रेन किया जाएगा। वो सब कार्यक्रम चल रहा है। जब ये एक रास्ता खोल देगा भारत के विद्यार्थियों को जापानीज यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी और रिसर्च के लिए भी।
1: अंडरस्टैंड। आपने बहुत विस्तार से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम को तय सुनते हैं दादरा देखो सकी, विदुषी शांति हिरानंद की आवाज में प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी के तहत।

0: हिरणन अभी आप सुन रहे थे विदुषी शांति हिरणन से दादरा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आइए सुनते हैं आलमी खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से आलमी खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी के भरोसे मंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हॉर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमरीका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शरायत पूरी नहीं हो जाती। मर्दों के क्रिकेट में चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरफ्त मजबूत हो गई है। मेजबान टीम 372 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है। और ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के लिए अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का एक बार फिर इरादा किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात से मुतालिक वज़रा की 12वीं मीटिंग के अख्तिताम के मौके पर एक मुश्तरका वजारती बयानिये में कहा गया कि ब्रिक्स मुल्क पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे की मुकम्मल और मुअसर अमल आवरी में पेशरफ्त आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस मुआहिदे के तहत अपने अज़्म को एक बार फिर दोहराते हैं। मेंबर मुल्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से फाइनेंस की दस्तयाबी समेत बैनल अक्वामी ताउन में इजाफा लाजमी है ताकि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के अहल हो सकें और साथ ही पायदार तरक्की और गुरबत को जड़ से खत्म करने के मामले में पेशरफ्त कर सकें। ब्रिक्स ममालिक ये मानते हैं कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन और इनके बाहर भी जिसमें जुनूब जुनूब ताउन के जरिए भी ताउन और शराकतदारी शामिल है से आवाम मरकूज अंदाज नजर के साथ पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। इस बरस भारत ब्रिक्स की सदारत कर रहा है जिसका मौजू है मुजाहिमत इख्तराआत ताउन और पायदारियत के लिए तामीर। ब्रिक्स वज़रा ने पायदार तरक्की का हल होने की हैसियत से सर्कुलर मईशत में पेशरफ्त के ताल्लुक से भारत की क्यादत के लिए अपनी सताइश का इजहार किया है। इससे कबल मीटिंग से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि माहौलियाती कार्रवाई आवाम मरकूज पायदार और तरक्की पजीर ममालिक के हकायक के तय जिम्मेदार होनी जरूरी है। वजीर मौसूफ ने उभरते हुए आलमी माहौलियाती चैलेंजेस को उजागर किया और उनसे निमटने के लिए ब्रिक्स के मजबूत ताउन की जरूरत पर जोर दिया। अमला अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत क्वांटम साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल आलात तर्ज हुक्मरानी की तेजी से काया पलट कर रहे हैं। उन्होंने लेटरल इंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 15 रोजा रिफ्रेशर कोर्स में शामिल शुरका से खिताब करते हुए ये बात कही। डॉ सिंह ने सिविल सर्वेंट्स के लिए मुसलसल आमोजिश की जरूरत और मुताबिकत पैदा करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार हुक्मरानी के लिए मौसर तर्ज गुफ्तगु एक लाजमी जरूरत बन गई है। वजीर मौसूफ ने इस बात का भी जिक्र किया कि आदाब गुफ्तगु के बदलते हुए माहौल बिलखसूस सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रोल के दौरान अफसरान के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि वो मुख्तलिफ तरफैन के साथ मुअसर तौर पर बातचीत की सलाहियत को बढ़ाएं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से सरकारी सेक्टर के बैंक 1 महीने तक जारी रहने वाली मुहिम का आगाज करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग फॉर यूथ। नई दिल्ली में कल शाम पब्लिक सेक्टर बैंक कॉन्फ्लुएंस के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस मुहिम के दौरान बुनियादी तौर पर नौजवानों को जोड़ने और उनके मालियाती सफर का पता लगाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस मुहिम का टारगेट ग्रुप नौजवान पेशेवर अफराद होंगे जिनकी उम्र 16 बरस से ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुहिम नौजवान सारिफीन के साथ एक पायदार वाबस्तगी के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी, जिससे मुस्तकबिल में उनके कारोबारी सफर के लिए सहूलत हासिल होगी। भारत ने आज कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी के भरोसेमंदी और वसत आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अमरीकी इंतखाबात में वोटरों की शनाख्त की कमी के मुतालिक उनके बयान के हवाले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तर्जमान ने कहा कि भारत के इंतखाबी निजाम में मुस्तकिल अपनी मजबूती और भरोसेमंदी का मुजाहरा किया है। इन खबरों के मुतालिक के भारत को बांग्लादेश से तवानाई की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ तवानाई का एक जारी सिलसिला रखता है। उन्होंने कहा कि जहां तक इजाफी जरूरियात का ताल्लुक है, भारत अपनी जरूरियात रिफाइनिंग की सलाहियत और अपनी जानिब से दस्तयाबी को पेश नजर रखते हुए उसका जायजा ले रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कल हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाए ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मुकामी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अरदाश्तों की सुनवाई करते हुए 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत यह हुक्म दिया गया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका के साथ दस्तखत किए गए 14 नुकाती मुफाहमतनामे के तहत ईरान की सभी शरायत पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आबनाए हॉर्मुज बहरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। तेहरान ने इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोले जाने की गैर मुल्की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने और फौजी कार्रवाई को रोकने से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने मजीद महाजाराई के खतरनाक नतायज की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा है कि इस्लामी जमहूरिया दुश्मन की कार्रवाइयों और जारियत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी ये रायजनी तरफैन के दरमियान मुफाहमतनामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने की खातिर अमन बातचीत के लिए 60 दिन की मुद्दत के खत्म होने के बाद सामने आई। जनाब कालीबाफ ने सिफारती अमल

0: डब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलिमोन को शिकस्त दी। पहले गेम में लक्ष्य 16-21 से पीछे थे। बाद में उन्होंने अगले दो गेम एकतरफा तौर पर 21-8 और 21-4 से जीत लिए। ख्वातीन के डबल्स में भारत की ट्रीसा जोली और गायत्री गोपी चंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीफ की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी के भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शिनाख्त रखती है। और ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए ओहरमुस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमेरिका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शरायत पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम को तय सुनते हैं उस्ताद विलायत खान का सितार पर बजाया हुआ राग बिहाग।

0: जाने तुम कब आओगे।
1: सामने अभी आप सुन रहे थे दुलारी फिल्म से ये रहमा मोहम्मद रफी की आवाज में हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश के एल सेगल की आवाज में फिल्म जिंदगी से।

0: अभी आप सुन रहे थे केएल सहगल की आवाज में नगमा। इसी के साथ प्रोग्राम आखिरी शब अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आगे आप सुनते हैं खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुताल्लिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हॉर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमरीका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शरायत पूरी नहीं हो जाती। मर्दों के क्रिकेट में चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरफ्त मजबूत हो गई है। मेजबान टीम 372 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है। और ट्रीसा जोली और गायत्री गोपी चंद पर मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के लिए अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का एक बार फिर इरादा किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात से मुतालिक वुज़रा की 12वीं मीटिंग के अख्तिताम के मौके पर एक मुश्तरका वजारती बयानिये में कहा गया कि ब्रिक्स मुल्क पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे की मुकम्मल और मुअस्सर अमल आवरी में पेशरफ्त, आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस वादे के तहत अपने अज़्म को एक बार फिर दोहराते हैं। मेंबर मुल्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से फाइनेंस की दस्तयाबी समेत बैन अल-अक़वामी ताउन में इजाफा लाजमी है ताकि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के अहल हो सके और साथ ही पायदार तरक्की और गुरबत को जड़ से खत्म करने के मामले में पेशरफ्त कर सकें। ब्रिक्स ममालिक ये मानते हैं कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन और इनके बाहर भी, जिसमें जुनूब जुनूब ताउन के जरिए भी ताउन और शराकतदारी शामिल है, से आवाम मरकूज अंदाज नजर के साथ पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। इस बरस भारत ब्रिक्स की सदारत कर रहा है जिसका मौजू है मुजाहिमत इख्तिरात ताउन और पायदारियत के लिए तामीर। ब्रिक्स वुज़रा ने पायदार तरक्की का अहल होने की हैसियत से सर्कुलर मईशत में पेशरफ्त के ताल्लुक से भारत की क्यादत के लिए अपनी सताइश का इजहार किया। इससे कबल मीटिंग से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि माहौलियाती कार्रवाई आवाम मरकूज पायदार और तरक्की पजीर ममालिक के हकायक के तई जिम्मेदार होनी जरूरी है। वजीर मौसूफ ने उभरते हुए आलमी माहौलियाती चैलेंजेस को उजागर किया और उनसे निमटने के लिए ब्रिक्स के मजबूत ताउन की जरूरत पर जोर दिया। अमला अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मस्नूई जहानत, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल आलात तर्ज हुक्मरानी की तेजी से काया पलट कर रहे हैं। उन्होंने लेटरल इंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 15 रोजा रिफ्रेशर कोर्स में शामिल शुरका से खिताब करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने सिविल सर्वेंट्स के लिए मुसलसल आमोजिश की जरूरत और मुताबिकत पैदा करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार हुक्मरानी के लिए मौसर तर्ज गुफ्तगु एक लाजमी जरूरत बन गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से सरकारी सेक्टर के बैंक एक महीने तक जारी रहने वाली मुहिम का आगाज करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग फॉर यूथ। नई दिल्ली में कल शाम पब्लिक सेक्टर बैंक कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस

मुहिम के दौरान बुनियादी तौर पर नौजवानों को जोड़ने और उनके मालियाती सफर का पता लगाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस मुहिम का टारगेट ग्रुप नौजवान पेशेवर अफराद होंगे जिनकी उम्र 16 बरस से ज्यादा है। भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी और वुसत आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निजाम की सताइश और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अमरीकी इंतखाबात में वोटरों की शनाख्त की कमी के मुतालिक उनके बयान के हवाले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तर्जमान ने कहा कि भारत के इंतखाबी निजाम में मुस्तकिल अपनी मजबूती और भरोसेमंदी का मुजाहरा किया है। इन खबरों के मुतालिक के भारत को बांग्लादेश से तवानाई की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ तवानाई का एक सिलसिला जारी रखता है। उन्होंने कहा कि जहां तक इजाफी दरखास्त का ताल्लुक है, भारत अपनी जरूरियात, रिफाइनिंग की सलाहियत और अपनी जानिब से दस्तयाबी को पेश नजर रखते हुए उसका जायजा ले रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कल हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाएं ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मुकामी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की सुनवाई करते हुए 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत यह हुक्म दिया गया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमरीका के साथ दस्तखत किए गए 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत ईरान की सभी शरायत पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आबनाए हॉर्मुज बहरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। तेहरान ने इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोले जाने की, गैर मुल्की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने और फौजी कार्रवाई को रोकने से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मजीद महाजाराई के खतरनाक नतायज की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा है कि इस्लामी जमहूरिया दुश्मन की कार्रवाइयों और जारहियत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी ये रायजनी तरफैन के दरमियान मुफाहमतनामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने की खातिर अमन बातचीत के लिए 60 दिन की मुद्दत के खत्म होने के बाद सामने आई है। जनाब कालिबाफ ने सिफारती अमल का दिफा करते हुए कहा कि मुफाहमतनामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने के लिए 60 दिन की मुद्दत में ईरान के कौमी दिफा और घरेलू मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम मौका फराहम किया। मर्दों के क्रिकेट में गाले में टेस्ट मैच के 4th दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ मेजबान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। कल शाम जब खेल खत्म हुआ तो सोनल दिनुषा और धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए मानव सुथार ने 2 विकेट हासिल किए। इससे कबल दिन में भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की जीत के लिए 372 रन का निशाना रखा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलिमोन को शिकस्त दी। पहले गेम में लक्ष्य 16-21 से पीछे थे, बाद में उन्होंने अगले 2 गेम एकतरफा तौर पर 21-8 और 21-4 से जीत लिए। ख्वातीन के डबल्स में भारत की ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीक की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करना लाजमी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हॉर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमरीका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शरायत पूरी नहीं हो जाती। और
जीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद।

0: मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का बचाता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते हैं पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। इस बीच वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना का उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और किफायती पाइप्ड गैस पहुंचाना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक जलमार्ग दोबारा नहीं खुलेगा। FIH हॉकी विश्व कप में कल भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और दोस्तों आइए अब आपको पुराने पुराने बहुत पुराने दौर में लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का नाम है गीत सुनहरे और उन गानों को हम सुनेंगे, उनको फिर से उस दौर में पहुंच जाएंगे सुन के जो बहुत बहुत बहुत साल पहले हमारे गायकों ने गाया था और हम तक अभी एक प्यारी सी आवाज सबसे पहले जो आ रही है वो है उमा देवी जी की और ये फिल्म है कहानी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूप छांव का ये गीत, जिसे आवाज दी थी उमा देवी जी ने, जिसे जिन्हें हम टुनटुन के नाम से भी जानते हैं। और आइए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत आवाज़ KL सहगल साहब की। फिल्म है जिंदगी।

और दोस्तों आप भी वो दिन याद कर सकते हैं जिनमें आप कभी खत लिखा करते थे, या कभी सुना तो होगा आपने कि पहले जमाने में लोग खत लिखते थे और इतना ज्यादा ये मशहूर था ये बात, खतों का जो आना जाना था, चिट्ठियों का जो आना जाना था, वो इतना ज्यादा फेमस था कि जब लोग नहीं मिल पाते थे तो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। और इसी बात की बानगी है ये बहुत ही प्यारा सा गाना, एक बार फिर उमा देवी की आवाज में फिल्म दर्द से।

के किसी पुराने से कोने में उतर गई हो। 1949 की फिल्म महल का ये गीत आएगा आने वाला भी एक ऐसा ही गीत है। मधुबाला जी पर फिल्माया गया ये गीत अपनी रहस्यमय धुन, खूबसूरत संगीत और लता मंगेशकर जी की यह जादुई आवाज़ की वजह से हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में शुमार है। तो आइए उस दौर की उसी रहस्यमय फिजा, वही इंतज़ार और वही मधुर आवाज़ फिर से महसूस करते हैं रात के इस पहर में, जबकि वक्त हो रहा है रात के 1:25 और पूरे 10 सेकेंड्स।

और दोस्तों इसी कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति हम आपको सुना रहे हैं गीत सुनहरे में फिल्म दिल लगी से। सुरैया और श्याम जी की आवाज़।

0: जिंदगी।
1: दोस्तों चाहे ये दौर हो, चाहे बरसों पुराना दौर रहा हो या आगे आने वाले कई सालों बाद कोई दौर आए, लेकिन हमेशा से यही हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा कि मोहब्बत की शुरुआत, मोहब्बत का आगाज हमेशा आंखों से ही हुआ है और होता रहेगा। लता जी की आवाज, फिल्म है बरसात।

उस आंखों में बसे या कोई दिल में समा जाए, लेकिन अगर कोई चुप चुप खड़ा रह जाए तो फिर दोस्तों से रहा नहीं जाता, है ना।

तो सो अगर प्यार करना है तो आपको अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ेगा, ये हमारा कहना नहीं है जनाब, ये तो पुराने जमाने से पता नहीं कब से हमारे संगीतकार, हमारे लिरिसिस्ट ये हमको समझाते आ रहे हैं और ऐसी ही कुछ बात कही है इस फिल्म के इस गाने में। फिल्म का नाम है अंदाज और आवाज है लता मंगेशकर जी की।

दोस्तों, गाने भी हमारा सहारा बन सकते हैं। जिंदगी में हम आए हैं, दुनिया में रहने के लिए आए हैं, तो बहुत सी बातें भी सुननी पड़ेंगी लोगों की। लोग हमारा दिल भी तोड़ेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हर बार एक नए जोश के साथ, एक नई नए अंदाज के साथ तैयार होना है। और ये बात हम नहीं कह रहे, न जाने कितने साल पहले, बहुत सालों पहले, करीब 1950 में गीता दत्त जी की आवाज में, बाजी फिल्म में, इस गाने ने कह दिया था हमें।

0: रनिंग।
1: दोस्तों अगर पुराने जमाने की ये गाने नहीं होते ना तो हम कभी नहीं समझ पाते कि आखिर जो पहले जमाने में मोहब्बत होती थी वो कैसी होती थी, है ना। और इसी मोहब्बत को एक जाहिर करता है एक बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म अलबेला से लता मंगेशकर जी और चितलकर जी की आवाज।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बारहवीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेन्द्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किया चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट ने असम औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में सौंपा जाएगा। सरकार ने बताया कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों की मंत्री वॉर्सेन अघाबैकियन शाहीन से मुलाकात की। फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फिलिस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर

0: Stadium in Amstelveen. Last evening, with this win, India climbed to the top of Pool D with 4 points from 2 matches. India will face England in their concluding Pool D fixture on Thursday. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और दोस्तों आइए सुनते हैं आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरु मेघनायन को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham.

ये आकाशवाणी दिल्ली का IIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24 चैनल। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, कर्नाटक म्यूजिक का ये कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे जी उमा का वायलिन वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिनीवेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं वो कार्यक्रम, जानते हैं जिसे आप आज इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप जानेंगे अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में। 5:20 पर वक्त होगा देशभक्ति गीत का और 5:30 पर कार्यक्रम स्वरंजनी में आज आप सुनेंगे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान का गायन राग पराज में। श्रोताओं सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जिसमें आज की कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल और हरिओम शरण। सुबह 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज आप सुनेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का विचारों पर। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

6 बजकर 55 मिनट पर संस्कृत में समाचार होंगे और उसके बाद 7 बजकर 10 मिनट पर संगीतिका कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुनेंगे स्वास्तिक भारद्वाज के भजन। सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगी और 8 बजे समाचार प्रभात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: में अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिखा बिख खाई, माया मोह परम प्रफुल्ल सुत धारा से प्रीत लो। एक तम पंथ सुनो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरे राम दास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरे राम दास राखो सरनाई।
1: सो कहौ टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसे आ गुरु का,

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसो ही है सावना दावे साहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसो ही है सावना दावे साहु।

दुबिधा एहो फल नाही जिय जिस जाल ने।

जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जीओ शुद्ध होवे सुपीख चतुराई दुबदा एह फल नाही जीओ।

कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहे भरपूर राम नाम देवा में सूर नय नय प्रश्न जाहे नानक तो मुखन त्रिपाहे। जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात को पीला आया। वृंदावन में रंग किया कल मैं वेद सरवण हुआ नाउ खुदाई लो पया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया। चारे वेद होए सचार पर पड़े गुणे तिन चार विचार। पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सदगुरु टोहारिया।

ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿੰਦੀ ਹਰ ਨਾਮ।

पढ़ पुस्तक संध्या बादं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, संध्या बादं। उछल पूजस बगल समाधं, मुख झूठ विभूखन सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं, गल माला तिलकले लाटं, दोय धोती वस्त्र कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं, कहो नानक ने चौ त्यावै, बिन सतगुर वाट न पावे, पौड़ी कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुकम के मन भाव दे राह पीड़ै, अगे जावना नंगा तुझे चलया, तां दिसे करा डरावना।

나오 시장 우리 삶을 회대한 기쁨까지 다사이 아까 나이스 이수 세바

तुटी टिकाने जपमानी तान मिले शाखाए अंतर पूजा पड़े करते बा संजम तुरका पाई

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवी प्रथम भगवती समरका गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है। जैस बैठे सब दुख जाए त्रेक बहादुर सिमरिया कर नौ निदया बेताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनदिट कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किस्सा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथे आ रहे तो देख तेग फतेह दर्द की पैज पंत की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोर बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान राहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहेब अदे हो।